0: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, अब प्रस्तुत छ हाम्रो बिहानी प्रसारण सेवा अर्थात प्रथम अधिवेशनमा अब उसो प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरूबारे संक्षिप्तमा जानकारी। अहिले 6:55 अनि 7 बजे सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समय प्रसार गरी संस्कृत अनि हिन्दीमा समाचार। 7:05 प्रस्तुत गर्नेछौ यस केन्द्रबाट कार्यक्रम गान्धी कथा अन्तर्गत एक चिन्तन गान्धी दर्शन। यसरी नै 7:25 सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट नेपालीमा समाचार। 7:35 लिएर आउनेछौ यस केन्द्रबाट कार्यक्रम प्रणाम सिक्किम। 8 बजे अनि 8:15 सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समय प्रसार गरी क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजीमा समाचार। साथै 8:30 सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको उत्तर पूर्वी केन्द्र शिलङबाट पूर्वोत्तर समाचार। यसै गरी 8:40 प्रस्तुत गर्नेछौ यस केन्द्रबाट नेपाली आधुनिक गीतहरूको कार्यक्रम गीतिमाला। 9 बजे यहाँले सुन्नुहुनेछ आजका मुख्य समाचार। 9:02 प्रस्तुत गर्नेछौ कार्यक्रम चित्रांजली अनि 9:30 प्रस्तुत गर्नेछौ लेप्चा लोकगीतका कार्यक्रम। 10 बजे पुनः सुन्नुहुनेछ आजका मुख्य समाचार। यसरी नै 10:02 लिएर आउनेछौ कार्यक्रम ताजे तराने अनि 10:30 श्रोताहरूले सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट
1: समय प्रसार। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां नीति आयोगस्य शासी परिषद उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवोचत् यत् यदा विश्वस्य प्रमुखाः अर्थव्यवस्थाः आर्थिक समाह्वानानां सामुख्यं कुर्वन्तः सन्ति तस्मिन् काले अपि भारतस्य विकासयात्रा विश्वम् अविरतं प्रेरयति। तेन ऊर्जा क्षेत्रे वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतीनां स्वीकरणाय आत्मनिर्भरतां प्रति देशस्य संकल्पं दृढयितुं बलं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा राज्यानि एकं मण्डलं एकः उत्पादः ODOP तथा रक्षा निर्माण क्षेत्रे निर्यातोन्मुख नीतीनां विकासाय प्रेरितानि। अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारत @2047 कृते समावेशी मानव विकासः आसीत्। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 58-तम नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलदूरभाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मन्त्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य सम्बद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः चिन्तां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्रात् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मन्त्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्री गोयल तत्रत्य भैषज उद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मन्त्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत ईएफटीए व्यापार आर्थिक सन्धेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मन्त्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामि क्रीडायां सिंधुः चेन युयू इत्यनया सह स्पर्धिष्ठ। एतत्पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानन्दः तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दो दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज दो दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 213.67 मीटर तथा 1404 किलोहर्ज में हमें आकाशवाणी को गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। यसका साथै श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप अनि एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समय यसबेला हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार बिहानीको 7:05 भइरहेको छ र अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम गान्धी कथा अन्तर्गत एक चिन्तन गान्धी दर्शन। वाचक हुनुहुन्छ तारा कुमार प्रधान।

0: श्रोता यतिन्जेल प्रस्तुत थियो गान्धी कथा अन्तर्गत एक चिन्तन। वाचक हुनुहुन्थ्यो तारा कुमार प्रधान।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
4: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
4: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
1: अरे
4: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
4: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
4: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: निर्वाचन आयोग भारत सरकारको निर्देश अनुसार सिक्किममा SIR अर्थात मतदाता सूचीमा विशेष सघन पुनरावलोकन कार्य जारी रहेको छ।
9: गत 30 मईदेखि 28 जून 2026 BLO-हरूले घर घरमा गएर इन्युमेरेशन फर्म वितरण अनि संकलन गर्नेछन्।
8: सबै मतदातालाई आफ्नो फोटो सहित फारम राम्ररी भरेर समयमा नै बुझाउने अनुरोध छ।
9: 1 जुलाई 2026 18 वर्ष पुग्ने योग्य मतदाताहरूले पनि फर्म 6 बुझाउन सक्नेछन्।
8: फारम ECINET एप अथवा भोटर पोर्टल मार्फत अनलाइन पनि बुझाउन सकिन्छ।
9: राज्य चुनाव आयोग सिक्किम सरकारद्वारा जनहितमा जारी।
0: हामी आकाशवाणी गान्तोकको बिहानी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता अब केही क्षण मनोरञ्जन गरौं राम भजन सुनेर कलाकार प्रीति सागरको स्वरमा।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
3: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया

0: 50 प्रतिशत कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग, खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
5: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है। पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
6: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
5: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
8: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है।
4: दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोडमैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, चार दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र

0: ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पश्चिम पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रूपये होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। यह फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए तीन दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना, हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Centre signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite Memorandum of Understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
3: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over rupees 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
2: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said that boundary issue between Assam and Nagaland is a long-standing issue due to which the natural resources lying in the area could not be utilized for the nation.
4: In the area, we see immense potential of hydrocarbon. At the initiative of Union Home Ministry, particularly at the initiative of Honorable Union Home Minister, both Assam and Nagaland is joining hands to

आ गई जी आ गई। मुझे पता है कि आपको इंतजार हो रहा है ना बहुत देर से कि भाई जल्दी से वक्त हो और हम अपनी पसंद धड़ाधड़ यहाँ पर भेज दें। शुरू हो जाइए, भेज दीजिए वो गीत और वो नाम जो आपका नाम है और वो गीत की बोल जो आप सुनना चाहते हैं। लेकिन भेजना कहाँ है, जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो भी जान लें, 9868868753 या 9868868753 ये नंबर है जिस पर आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर ईमेल कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। जी हाँ, fmgoldairdelhi@gmail.com नंबर एक बार फिर से बता दूं, 9868868753 जी हाँ 9868868753 दोबारा नहीं बताऊंगी, जल्दी से नोट कर लीजिए और अपनी पसंद हमें लिख भेजिए। अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखिएगा और अच्छे से लिखिएगा, साफ सफाई से, नाम के नीचे नाम, कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ने में दिक्कत हो और फिर मुझे उसे स्किप करना पड़े। तो जितना हो सके क्लियर लिखिए ताकि मैं उन्हें शामिल कर सकूं। दिल का मेलबॉक्स सुन रहे हैं आप, 10:32:24 हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आंचरेखा क्रिस्टल वॉइस और ये है दिल का मेलबॉक्स जिसमें आप भेज रहे हैं हमें अपनी पसंद। तो चलिए शामिल कर लेते हैं कुछ मैसेजेस को। रजनी, जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, उदय भानपाल, जय हिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बाघेल और पूरे परिवार ने हमें मैसेज भेजा है। संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे ने महाराष्ट्र नांदेड़ से मैसेज किया है। योगेश शर्मा ने फरीदाबाद से लिखा और हमें लिखा है उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव गरिमा ने कहां से, नई दिल्ली से। और इसके साथ हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है महाराष्ट्र पुणे से, सुनील, सुषमा, राजवीर, अनन्या गायकवाड़ और लिखते हैं कार्यक्रम आपके बहुत अच्छे लगते हैं, शुक्रिया। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु मुकेश और जगताप का मैसेज, मुकेश जगताप का मैसेज। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, मशरूका टीला से, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का मैसेज। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह नेपानगर मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं। सतवीर सिंह बिजानिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा आरजू, नव्या बिजानिया ने हमें सिरसा हरियाणा से लिखा है। मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान और मोहम्मद इसरार नरगिस खातून के साथ लिख रहे हैं हमें मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान अहमद, सुफियान बलीमारान से हमें लिख रहे हैं और राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश हमें लिख रहे हैं संभाजीनगर छत्रपति से।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं दिल का मेल बॉक्स और दिल का मेल बॉक्स में आपकी फरमाइशों का सिलसिला जारी है। किस किसने हमें मैसेजेस भेजे हैं ये शामिल कर लेती हूं और फिर अगला गीत किसकी फरमाइश है ये आप पता कर ही लेंगे। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना लतावली जिला मुरादाबाद से हमें लिख रहे हैं और हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है सलीम अख्तर, रेशमा बेगम का अलीगढ़ से और मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा की

ये अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा ने हमें पदमपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लिखा। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अबान और पूरे अब्बासी परिवार ने बुलंदशहर से हमें लिखा है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानुप्रकाश का मैसेज, पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर का, नरवेल महाराष्ट्र से और मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मोहरकर का मैसेज। श्रीमती रंजू बाई धाकर, युवराज सिंह धाकर, शिवांगी धाकर, जगदीश धाकर ने मध्य प्रदेश रतलाम से हमें लिखा है और विरार महाराष्ट्र से विकास वर्तक का मैसेज। बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया का हरियाणा झज्जर से और कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान का मैसेज हमें पहुंचा है। साथ ही हमें लिखा है उस्मान वोहरा, शहनाज, शिरीन और गुड्डी ने अहमदाबाद से, जी हाँ अहमदाबाद से, और हमें महाराष्ट्र से रूपेश संगई, महेश संगई, प्रगेश, प्रितेश और पूरे संगई परिवार का मैसेज मिला है। साथ ही हमें मनोहर लाल गांधी ने विजय नगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से लिखा है। इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन का मैसेज। कॉलेज रोड, गरोड, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से हमें हरिप्रसाद विश्वकर्मा, उषा, मानसी, वाणी का मैसेज मिला और ये मैसेज पंकज मोहड़ का अमरावती महाराष्ट्र से। प्रकाश गोगिया ने हमें लिखा है दिल्ली से। मधु किरण का भी मैसेज हमें पहुंचा है। रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का मैसेज हमें बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से मिला है। प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा ने प्रथम सलूजा के साथ हमें लिखा है जनकपुरी नई दिल्ली से और ये मैसेज संदीप मक्कड़, ज्योति, मन्नत, भरत, कमल का पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का मैसेज। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का मैसेज हमें मिला। हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा का भाटापारा छत्तीसगढ़ से मैसेज। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा का मैसेज। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवाड़ा से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, अनवर लुबना और आलिया अंसारी का मैसेज और रघुबीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू का मैसेज। और इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज कहां से पहुंचा है, आप इतना छोटा लिखते हैं कि मुझे नाम अलग से ढूंढने पड़ते हैं। ऋतु बत्रा, जुगल बत्रा, हर्षिता बत्रा और कृष बत्रा का गोपाल पार्क से मैसेज मिला है। पहले अपने नाम लिखिए एक के बाद एक और उसके बाद अपने शहर का नाम लिखिए, थोड़ा स्पेस दीजिए और ऊपर नीचे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे लाइन से जब आप लिखते हैं तो पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। रेणु गोयल, सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी से हमें लिख रहे हैं और इसके अलावा धर्मवीर फिल्म से गीत सुनना चाहा है किसने, जगदीश कुमार, ऋतिक, राहुल ऋतिक नांगलोई से, राहुल और ऋतिका का नांगलोई से, जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल विलिस का मैसेज, जनकपुरी, सहारनपुर से, भव्या झा गाजियाबाद से हमें लिख रही हैं और श्रोता नजफगढ़ जय विहार से, शाहरुख फारूक, शबनम और शाहनाज, साथ ही महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी का मैसेज, दिशा गोस्वामी के साथ नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। बहुत सारे मैसेजेस रिपीट हैं, ऐसा मत करिए दोस्त। मधुबाला तिलंगपुर कोटला से हमें लिख रही हैं और कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना का मैसेज। स्वर्ण सिंह गिलका, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविनाश के साथ ठाकुरावाला से लोहगढ़ गांव से मैसेज पहुंचा। कैलाश चंद कोटली, कोटपुतली राजस्थान से हमें लिख रहे हैं और कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का मैसेज हमें मिला है। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति पौरुष का हमें व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से मैसेज पहुंचा। भवानीगढ़ पंजाब से राजेंद्र कुमार सचदेवा का मैसेज और ये मैसेज हमें लिखा है अनिल शर्मा ने सरिता विहार से। इसके अलावा हमारे पास सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचिता वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली, सर्वद और सानवी का मैसेज पहुंचा है कालेगांव जाफराबाद से। हमें लिखा है कैप्टन ईश्वर चंद्र शर्मा ने द्वारिका से जय हिंद और हमें
निधि कपूर ने गुड़गांव से हमें मैसेज पहुंचाया है। बहुत सारे मैसेजेस हैं, कोशिश रहेगी शामिल करती चलूंगी, लेकिन

आपके भी गीत हम तक पहुंच रहे हैं, जिनकी फरमाइशें आप पहुंच सुनना चाहते हैं, जो गीत आप फरमाइश हमें कर रहे हैं, आपके भी मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं। पुराना धूमधारा विक्की धूमधारा पूना राम धूमधारा विक्की और दीपू यश का हमें रघुबीर नगर से नई दिल्ली से मैसेज पहुंचा है। इसके खन्ना ने गुरुग्राम से लिखा है और हमारे पास ये मैसेज जितेंद्र कुमार गोदावरी आशनी लकी और विशाल का फरीदाबाद से, दातार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत का गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से मैसेज, उत्तराखंड से विपिन नेहरा काशीपुर से काशीपुर उत्तराखंड से विपिन नेहरा का मैसेज, हरजिंदर छिंदा जसवीर जैसी सीता और गीता गांव नथाना पंजाब से हमें लिख रहे हैं, दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण कपिल कुनाल का हमें मैसेज पहुंचा, राजेश कुमार मनीष कुमार उमेश खयाला से हमें लिख रहे हैं विष्णु गार्डन से, सुनीता पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गव्या मल्होत्रा भाई सुचा सिंह पाठक का अनारकली बाजार जगराओं से मैसेज पहुंचा है, और एके टंडन ने माया इंक्लेव हरिनगर से हमें लिखा है कि आपका प्रेजेंटेशन होमली लगता है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप ऐसा ही महसूस करें। और मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी स्वर्णकार आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का मैसेज हमें पहुंचा है शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, हमें लिखा है कलानौर से नरेंद्र शर्मा किरण शर्मा नितिन और मयंक शर्मा ने एसपी गोयल का हमें मैसेज पहुंचा है, नाम नहीं लिखा कहां से। और इसके अलावा हमारे पास मेरा जहां आजाद नगर गुलाब से लिख रही हैं गुलाब साबिर राही ताज मोहम्मद अंसारी के साथ, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का मैसेज, राजेंद्र जटोलिया उषा जटोलिया चारू जटोलिया कृष्णा जटोलिया के साथ दिल्ली नांगलोई से लिख रहे हैं, और हमारे पास अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक मधु नायक का मैसेज भी पहुंचा है कहां से, मुल्तानी ढांडा पहाड़गंज से। और इसके बाद मैं देख रही हूं बहुत सारे रिपीट मैसेजेस, भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा रुद्र वर्मा दंतरेगी से हमें लिख रहे हैं, और मुझे तो लग रहा है कि मैं बार बार बहुत सारे नामों को शामिल कर चुकी हूं लेकिन फिर भी आप लिख रहे हैं।

तो लिखते रहिए, कोई बात नहीं, मेरे पास तो मैसेजेस पहुंच रहे हैं। फिलहाल मैं गीत आप तक पहुंचा देती हूं। ये गीत की फरमाइश हमें लिखी है विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े और वैभव शिंदे ने, मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से, और हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे ने। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत।

दोस्तों दिल का मेल बॉक्स में तो इतना ही, लेकिन फिर से मुलाकात होगी 11:10 पर। लेकर तस्वीर जुड़िएगा जरूर आपकी दोस्त आर्ष रेखा क्रिस्टल वॉइस के साथ। फिलहाल इस गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के नेताओं और बिजनेस लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। कांग्रेस सदस्यों, अमरीकी सीनेटर और बड़ी अमरीकी कंपनियों के अधिकारियों ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। वारबर्ग पिंक्स के चेयरमैन चार्ल्स आर, प्रतिनिधि फ्रेंच हिल, प्रतिनिधि ब्रैड शर्मन, सीनेटर सिंडी हाइड स्मिथ और सिस्को के जीतू पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह उपलब्धि उस भरोसे और विश्वास को दिखाती है जो भारत के लोगों ने उनके नेतृत्व पर जताया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य तथा उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज दो दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति पर अंतोनियो गुतरश ने सभी पक्षों से युद्ध विराम को पूरी तरह लागू करने तथा स्थिति को और बिगड़ने से रोकने का आग्रह किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के उच्चस्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में हुई प्रगति को इस अचानक बदलाव का कारण बताया। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जर्मनी में आयोजित ISSF विश्व कप से स्वदेश वापसी के समय तबीयत खराब होने के बाद उन्हें नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल करके मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said that the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. He added that the government is actively supporting self-help groups, which are going a long way in making women financially independent. Sharing a Sanskrit quote, the Prime Minister said the country's Nari Shakti is the cornerstone of nation building. He added that the mothers, sisters and daughters of the nation today are enhancing the glory of Mother India with their extraordinary talent and skills in every field. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite Memorandum of Understanding, MOU, with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart, Nephew Rio. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
2: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over Rs. 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
1: In a social media post, Mr. Shah noted that the agreement will open the way for oil and gas exploration in the region. He added that the MOU stands out as an exemplar of India's unity, where both the states give up disputes to realize the vision for an energy independent India. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. Motor spirit and high-speed diesel are essential commodities, and uninterrupted availability at fair prices is critical for transportation of goods and passengers, agricultural operations, emergency services and national security. The centre has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cybercrime Coordination Centre under the Ministry of Home Affairs, cyber criminals are increasingly using AI to create realistic deepfake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovery systems, and unauthorized access to financial and digital services. Renowned Indian shooting coach and former Asian Games gold medalist Jaspal Rana has passed away. He was 49. According to National Rifle Association of India President Kalikesh Narayan Singh Dev, Rana breathed his last at a Delhi hospital last night. Rana recently underwent a medical procedure after falling ill during the Indian contingent's return flight from the ISSF World Cup in Munich, Germany. Upon landing in New Delhi, he was immediately hospitalized and underwent a medical procedure to have a stent fixed. Rana was serving as the high-performance coach for the Indian pistol shooters. He mentored Manu Bhakkar and helped her secure a historic double bronze medal at the 2024 Paris Olympics. And that is the end of this news bulletin.

क्या आप 2026 की इन गर्मियों में, इन छुट्टियों में दक्षिण भारत की यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं? तो मैं आपको आज एक बहुत ही खूबसूरत जगह के बारे में बताने वाली हूं, और अगर आप यहां पर कभी गए हैं तो हो सकता है कि आपकी यादें ताजा हो जाएं, और अगर आप नहीं गए हैं तो आपका मन कर जाए कि आप आज ही बस बैग उठाएं और पहुंच जाएं। आज जिस जगह की मैं बात करने वाली हूं उसे जानते हैं हम तमिलनाडु के एयरकोट के नाम से। जी हाँ, तमिलनाडु का एयरकोट, ये पर्यटन स्थल जो है वो बहुत ही खास है, और अगर आप पारिवारिक छुट्टियां यहां पर बिताना चाहते हैं तो इसके लिए एकदम बेस्ट प्लेस है ये, जिसमें भरपूर आनंद, आराम, रोमांच और मौज मस्ती सब कुछ आपको मिलेगा। एयरकोट झील, पगोड़ा पॉइंट, गुफा, भालुकी और कोटा चोड़ू, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं यहां पर देखने के लिए जो यहां की अद्भुत सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। कुछ बेहतरीन पर्यटन स्थल और भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इस जगह की यात्रा करना चाहते हैं तो आज की इस तस्वीर में रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि यहाँ के बारे में इतना कुछ तो मैं आपको बता ही दूंगी कि अगर आप यहाँ जाने का प्लान करते हैं तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप यहाँ पर अच्छे से घूम सकें, आप जान सकें कि यहाँ पर क्या कुछ है देखने के लिए, करने के लिए, खाने के लिए और घर लाने के लिए। बहुत सारी चीजें बताऊंगी मैं आपको, लेकिन रही मेरे साथ इस सफर में जुड़े हुए। 11:12 और 40 सेकंड हो चुके हैं, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। तस्वीर सुन रहे हैं आप, और शुरुआत करते हैं प्यारे से गीत के साथ रफी साहब और आशा जी और साथियों की आवाज में। ये रहा आई मिलन की बेला से खूबसूरत गीत आप सबके लिए।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: ग्यारह बजकर 20 मिनट 45 सेकंड हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आज रेखा क्रिस्टल वॉइस। आज हम निकले हैं तमिलनाडु के एयरकोड की यात्रा पर। तमिलनाडु का एयरकोड हिल स्टेशन अपनी अद्वितीय सुंदरता और प्रकृति की शांति के साथ आपका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक शांत और प्राकृतिक पर्यटन स्थल होने के नाते ये परिवार और दोस्तों के साथ खुशनुमा पल बिताने के लिए, मनोरंजक गतिविधियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। और अगर मैं बात करूं एयरकोड पहाड़ियों की, तो संतरे के बागानों, कॉफी, फलों और मसालों के बागानों से भरी ये भूमि शेवरॉय पहाड़ी में स्थित है। और अगर आप एयरकोड में ठहरे हैं तो आप आसपास के स्थानों जैसे सलीम, स्वामी मलाई, होसुर, इरोड, नमक्कल और कुछ बाकी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं इस जगह की, तो यहां पर घूमने के लिए ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां आपको जरूर जरूर जाना चाहिए। एयरकोड हिल स्टेशन गर्मियों के मौसम में एक प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है, लेकिन पर्यटकों के लिए ये अभी भी एक अनछुआ प्लेस है। यहां पर अभी भी कम लोग पहुंचते हैं, इसलिए हम यहां एयरकोड हिल स्टेशन और उसके आसपास घूमने के लिए आपको कुछ बेहतरीन प्लेसेस बताएंगे जिसमें आप के लिए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं एयरकोड झील की, तो तमिलनाडु में प्राकृतिक रूप से बनी झील एयरकोड झील जो है वो अपने आप में बहुत ही शानदार है। हरे भरे मैदानों के बीच शानदार नजारों का आनंद आप यहां ले सकते हैं। यहां के शांत और सुखद वातावरण में आप झील किनारे स्थित कई रेस्टोरेंट्स हैं, भोजनालय हैं, जहां पर बैठ सकते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ ले सकते हैं। एयरकोड में एक दिन में घूमने की योजना बनाते समय इस जगह को जरूर अपनी लिस्ट में शामिल करिएगा, क्योंकि ये जगह इस जगह पर तो है ही, यहां से आसानी से आप घूमने के लिए जा सकते हैं और आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये केंद्र है कहा जाए एयरकोट का, तो अपने आप में आसपास की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यही वजह है कि प्रकृति प्रेमी और भोजन प्रेमी यहां समान तौर पर पहुंचते हैं। एक अगर मैं बात करूं तो जिन्हें खाना बहुत पसंद है, जिन्हें प्रकृति बहुत पसंद है, वो सभी लोग यहां पर जरूर जाते हैं। झील में आप बोटिंग कर सकते हैं और आपके कई यादगार पलों को संजो कर ला सकते हैं। और अगर मैं बात करूं लूप रोड ट्रिप की, तो अपने आप में ये भी काफी खास है। 32 किलोमीटर का लूप रोड ट्रिप आप यहां पर कर सकते हैं। दोनों ओर बैरियर लगे हैं। यूपिन जैसे घुमावदार मोड वाली लूप रोड 32 किलोमीटर की यादगार यात्रा का अनुभव आपको देती है। और यहां तभी गाड़ी चलाएं जब आपको ड्राइविंग अच्छी तरह से आती हो और अपनी ड्राइविंग पर पूरा भरोसा हो। एयरकोड में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है ये। आसपास के इलाकों में हाइकिंग करना आपके लिए एक बेहतरीन अनुभव यहां हो सकता है। और अगर आप एयरकोड में दो दिन में घूमना चाहते हैं, रोमांच और प्रकृति के नजारों का आनंद लेना चाहते हैं, तो ये जगह उसमें आप शामिल कर सकते हैं और उसके लिए ये प्लेस एकदम फिट बैठती है। तो अगर आपके पास एक दो दिन का समय है और आप एयरकोड घूमने जा रहे हैं तो यहां जरूर जाइएगा। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो एयरकोड में पेगोड़ा पॉइंट एक प्लेस है। ये गोड़ा पेगोड़ा पॉइंट जो है वो यरकोड में स्थित एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है और ये भरपूर पहाड़ियों से घिरी है और बहुत खूबसूरत जगह है। सबसे खूबसूरत नजारे आपको यहां देखने के लिए मिल सकते हैं। यरकोड बस स्टैंड से सिर्फ करीब करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जगह पिरामिड पॉइंट के नाम से भी यहां फेमस है क्योंकि यहां शिंगलों के 4 ढेर पिरामिड की तरह लगे हुए हैं और बेहतरीन नजारों के लिए यहां पर लोग जरूर पहुंचते हैं कुछ समय बिताने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, जरूर बताऊंगी, आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल ये गीत आप तक पहुंचाती हूं लता जी की आवाज में।

तो अभी मैं आपको क्या बता रही थी कि हाँ, आप पगोड़ा पॉइंट जा सकते हैं और ये यरकोट से 5 मील की दूरी पर है। यहाँ कार या साइकिल से पहुंचना बहुत आसान है और इजीली आप जा सकते हैं यहाँ किसी भी तरीके से। साइकिल से अगर आप जाते हैं तो यहाँ के प्राकृतिक नजारों का मजा भी ले सकते हैं। यरकोट, तलाई, चौलाई, सेलम, ये सभी आसपास है, तो इन जगहों पर आप आराम से घूम सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो घूमने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो यहाँ पर पगोड़ा पॉइंट में, वो है सबसे अद्भुत नजारे देखने के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, जब आप यहां पर जा सकते हैं और आपको अलग अलग खूबसूरत नजारे देखने का मौका मिल सकता है। शानदार नजारों की तस्वीर अगर आप लेना चाहें तो अपने साथ कैमरा जरूर रखिएगा। सुबह के समय भीड़ कम होती है और आप इस टाइम पर जाकर फोटोग्राफी कर सकते हैं और यादगार तस्वीरें अपने साथ लेकर आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं रेशम फार्म की और गुलाब उद्यान की, तो आप यहां भी जाइएगा जरूर। ये यात्रा ज्ञान और मनोरंजन के लिए बेस्ट होगी। बगीचे में खिले रंग बिरंगे गुलाब आपको अलग अलग तरह की प्रजातियों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं जो गुलाब के उगने से जुड़ी होती हैं, गुलाब के पैदा होने से जुड़ी होती हैं, वो आपको पता चलेंगी। और इसी तरह आपको रेशम के कीड़ों के पालन पोषण और उनकी खोल से रेशम बनाने की उपयोगिता के बारे में भी बहुत सी जानकारी यहां पर मिलेगी। भालू की गुफा है जो आप देख सकते हैं यरकोट में, बहुत ही रोमांचक प्लेस है ये। यरकोट में आप इस जगह पर भी जा सकते हैं। नाटन बंगले के पास स्थित भालू की गुफा को भगवान गुरुगन का निवास स्थान माना जाता है और ये शिरवरोयन मंदिर के रास्ते में पड़ता है। अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो ये जगह आपका सचमुच मन जीत लेगी। आपको एक बार यहां भी जरूर जाना चाहिए। कोटा चेडू सागौन वन है, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत निर्मल वन है ये। यहाँ प्रकृति की गोद में शांत और लंबी सैर करना आपको सचमुच बहुत ही सुखद लगेगा और आप यरकोट के अलग अलग वन्य जीवों के नजारे भी, दर्शन भी कर सकेंगे। चींटी, खाने वाले जानवर, बायसन, लोमड़ी, पैराडाइज्ड फ्लाई कैचर और इसके अलावा अवाबील पक्षी, ऐसे बहुत से पक्षी भी आपको यहां पर देखने मिलेंगे। चुपचाप अपने कैमरे में आप इनकी तस्वीरें यहां पर ले सकते हैं और अपने कलेक्शन में इन्हें इकट्ठा कर सकते हैं। वानियर नदी और उससे सटे बांध के पास कुछ पल आप रुक जाइए, सचमुच आपका दिन बन जाएगा। और अगर मैं बात करूं किलियूर वाटरफॉल की, तो क्या आपको नहीं लगता कि गर्मियों के मौसम में झरने जो हैं वो सचमुच पर्यटकों की एक मेन अट्रैक्शन होते हैं। जहां पर भी आपको पता चल जाए कि वाटरफॉल है, आप पहुंच जाते हैं बिना कुछ सोचे, तो फिर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी एक किलियूर वाटरफॉल है जो कि यरकोट झील के बहते पानी से बनता है। 300 किलियूर वाटरफॉल भी इसे कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है। झरने बहुत ही खूबसूरत नजारे पेश करते हैं और आप झरने तक जाने वाले 2 किलोमीटर लंबे रास्ते पर पैदल चल सकते हैं। सिर्फ एक दिन का अगर समय मिल जाए आपको, तो फिर आप दिन के समय में समय से जाइए यहां पर और इस जगह का आनंद जरूर लीजिए। डियर पार्क है एक जगह, यहां भी आप जा सकते हैं। बेस्ट प्लेस है, आपको जरूर यहां घूमना चाहिए। पार्क में आजाद रूप से घूमते हुए हिरण, बतख और मोरों की आप संगति कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और सचमुच ये आपकी आत्मा को तरोताजा कर देंगे। ये पार्क यरकोट झील के किनारे पर है और इसलिए यहां की हरियाली जो है वो सचमुच मन को जीत लेती है। और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं यरकोट में घूमने के लिए, लेकिन गीतों के साथ साथ बढ़ेंगे आगे आगे, बस हमें साथ लिए चलते रहिए।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ब्रेक के बाद वापस तो मिलना ही होता है। आप सोचते होंगे ना कहाँ चले गए, अरे भाई छोटा छोटा ब्रेक तो लेना बनता है ना। 11:37:41 हो चुके हैं और मैं याद दिला दूं कि आपको तमिलनाडु की एयरकोट घुमा रही हूं आज मैं। तो भाई एयरकोट में और कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहां पर आप जा सकते हैं, तो बता दूं कि एयरकोट में लेडीज सीट एक जगह है और एक तरह का ये अवलोकन मंच है जहां से पूर्वी घाट की घुमावदार सड़क का नजारा दिखता है। यहां से मेटूर बांध और सलेम शहर का शानदार नजारा देख सकते हैं और इसके अलावा यहां एक टावर भी है जिसमें दूरबीन लगी है ताकि आप मनमोहक नजारों का आनंद ले सकें। ये टावर पर्यटकों के लिए सिर्फ दिन के समय ही खुला रहता है, तो अगर आप यहां जाएं तो दिन में यहां जाइएगा और दूरबीन से यहां के आसपास के खूबसूरत नजारों का आनंद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा एयरकोट में शिवरॉय हिल्स है जो कि आपके लिए बहुत खूबसूरत प्लेस हो सकता है। शिवरॉय हिल्स एयरकोट के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है और ये पहाड़ी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और लोग यहां खास तौर से प्रकृति का आनंद लेने और सुकून पाने के लिए आते हैं। इस पहाड़ी इलाके में कुछ पुराने कॉटेज और होम स्टेज भी हैं। लोग वीकेंड में यहां दो दिन बिता सकते हैं और उनका सचमुच सफर जो है वो लाजवाब हो जाता है। अगर मैं बात करूं एयरकोट घूमने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, तो भाई एयरकोट घूमने का सबसे अच्छा समय है मार्च से जून, जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उस दौरान आप यहां जा सकते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग एयरकोट में वीकेंड ट्रिप को प्लान करते हैं, लेकिन एक हफ्ते के लिए एयरकोट घूमने की सलाह मैं आपको दूंगी। अगर आपको वक्त मिले तो करीब एक हफ्ते यहां रहिएगा और ये वक्त तो आपको शायद छुट्टियों में ही मिल पाएगा। ज्यादातर पर्यटन के तौर पर जो लोग यहां पहुंचते हैं मई महीने में एयरकोट जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस दौरान कई गतिविधियां होती हैं जिनमें 7 दिनों तक चलने वाला ग्रीष्म उत्सव भी शामिल है। एयरकोट में अलग अलग मौसमों में यात्रा अगर आप करते हैं तो आपको बता दूं कि ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक होती है यहां, जो कि छुट्टियों और मौसम के लिए सबसे बेस्ट है। मानसून की अगर बात करूं तो हरे भरे नजारे लेकिन फिसलन भरी सड़कें आपको यहां पर मिल सकती हैं। सर्दियों में ठंडा मौसम और कम भीड़ होती
2: है। मीडियम वेव 213.67 मीटर बैंड को 1004 से 4 किलोहर्ज महामी आकाशवाणी गान्तो केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। साथै हामीलाई 103 मेगाहर्जमा एफएम कञ्चनजंगा मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता अब हामी सुनाउन लागेका छौं कार्यक्रम नारी संसार।

0: श्रोता, हिन्दी फिल्मी गीतहरू सुनाउने क्रममा अन्तिम गीत सुनिरहनु भएको थियो वास्य फिल्मबाट अभिजित भट्टाचार्य अनि साथीहरूको स्वरमा रहेको गीत। हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं, साथै हामीलाई 103 मेगाहर्जमा एफएम कञ्चनजंघा मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, अब सुनाउन लागेका छौं हिन्दी भाषा पाठ।
1: नमस्ते गुरुआमा।
2: नमस्ते बच्चो। नानीहरू, अब तिमीहरू आफ्नो परिचय हाम्रो श्रोताहरूलाई देउ त।
1: गुरुआमा, मेरो नाम मृदुल मयङ झा हो। म कक्षा 8 होली क्रस स्कुलमा पढ्दछु।
3: गुरुआमा, मेरो नाम स्नेहा मेरी लेप्चा हो। म कक्षा 8 होली क्रस स्कुलमा पढ्दछु।
2: बहुत अच्छे बच्चो, आज हम संधि के बारे में जानेंगे। संधि शब्द को अर्थ जोड़ने काम हो, परस्पर मा मिलने द्विवटा वा द्विवटा भन्दा बेसी वर्ण जोड़ने प्रक्रिया नै संधि हो। साधारणत अघिल्लो शब्द को अंतिम वर्ण र पछिल्लो शब्द को शुरू को वर्ण को योग हुँदा संधि हुन्छ। यसरी वर्णहरूको मेल हुने प्रक्रियालाई सन्धि भनिन्छ। नानीहरू, बुझ्यो तिमीहरूले?
1: जी गुरुआमा।
2: अब मैं इसे हिन्दी में समझाती हूँ, तब आप लोग अच्छी तरह से समझ जाओगे। सन्धि संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मेल, मिलाप अथवा संगम। दो शब्द अथवा पद जब एक दूसरे के समीप होते हैं तो उच्चारण की सुविधा के लिए प्रथम शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के आरंभिक वर्ण या अक्षर को एक दूसरे से मिला दिए जाते हैं। इस मेल से शब्द के रूप में विकार उत्पन्न होते हैं। इसी विकारजन्य मेल को संधि कहते हैं। बच्चों, साधारणतः भाषा में संधि की परिभाषा होगी दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे भोजन आलय, भोजनालय। बुझे तिमी हरुले?
1: हजुर गुरुआमा।
2: लो मृदुल, अब तिमी मलाई संधि को परिभाषा हिंदी में भन त।
1: दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, जैसे विद्यालय।
2: एकदम ठीक मृदुल। अब स्नेहा, तिमी भन त हिंदी में भन सक्छौ?
3: गुरुआमा, म कोशिश गर्छु। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं।
2: शाबाश स्नेहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हामी संधि विच्छेद को बारे में जानने छौ। संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर पहली अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। यानी कि संधि विच्छेद को अर्थ हो अलग गर्नु। संधि को नियम द्वारा मिलने वर्ण को फेरी पहिलो अवस्था मा ल्याउने लाई संधि विच्छेद भनिन्छ। बुझ्यो हैन नानीहरूले?
1: हजुर गुरुआमा।
2: अब मैं इसे उदाहरण देकर समझाती हूँ। जस्तै उच्चारण, संधि छ उच्चारण र संधि विच्छेद गरेपछि यो उत् र चारण हुन्छ। यसरी नै गणेश को गण जोर इश। बुझ्यो तिमीहरूले?
1: हजुर गुरुआमा।
2: लो नानीहरू, हामीले संधि र संधि विच्छेद को परिभाषा त जान्यो। अब हामी संधि को भेदहरू को सिक्नु। वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं। पहलो स्वर संधि, दूसरो व्यंजन संधि, तेसरो विसर्ग संधि। नानीहरू, अब हामी यसको भेदहरूको अलिक विस्तारपूर्वक जान्ने छौ। पहिले छ स्वर संधि। दुईवटा स्वरहरू मिलेर उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तनलाई स्वर संधि भनिन्छ। जैसे विद्या आलय, विद्यालय। दिन इश, दिनेश। अब आप दोनों स्वर संधि के एक एक उदाहरण बताइए।
3: गुरुआमा, विद्यार्थी हुन्छ?
2: हाँ बिल्कुल, विद्यार्थी हुन्छ। अनि मृदुल, तिमीलाई भन त?
1: देवेन्द्र पनि हुन्छ गुरुआमा।
2: हजुर, देव जोड इन्द्र, देवेन्द्र पनि हुन्छ। बुझ्यो तिमीहरूले?
1: हजुर गुरुआमा।
2: बच्चों, स्वर संधि के भी पांच भेद होते हैं। पहलो दीर्घ संधि, दूसरो गुण संधि, तीसरो वृद्धि संधि, चौथो यण संधि, अनि पांचो आयादि संधि। बुझ्यो होइन तिमी हरुले?
1: हजुर गुरुमा।
2: शाबाश नानी हरु। अब हामी पहिले दीर्घ संधि को बारे में जानने छौं। जब अ आ ई ई उ ऊ तथा री को बाद मा त्यो हर्स्व र दीर्घ स्वर आउँछ, तब इनीहरुको मेलले दीर्घ स्वर संधि भनिन्छ। दुईवटा सजातीय स्वरहरुको मेलले दीर्घ स्वर बनिन्छ। जस्तै अ अ से आ। उदाहरण देकर बताती हूँ। स्वजोर अधीन स्वाधीन, सूर्य जोर अस्त सूर्यास्त। यहाँ स्व र सूर्य को उच्चारण में अंतिम में अस्वर आउँछ। अनि अधीन र अस्त यो सब अले शुरू हुन्छ, यसैले यो दीर्घ संधि हुन्छ। जस्तै आ र आले आ, बड़ी ई र छोटी ई ले बड़ी ई, बड़ी उ र छोटी उ ले बड़ी उ हुन्छ। बुझ्यो तिमीहरुले?
1: हजुर गुरुमा।
2: अब नानीहरुले दोस्रो छ गुण संधि। यदि अ आ को बादमा बड़ी ई छोटी ई आए भनी ए, अ आ को बादमा छोटी उ बड़ी उ आए भनी त्यो ओ, र अ आ को बादमा री आए तो अर हो जाता है। जैसे देव जोर ईश देवेश, चंद्र जोर उदय चंद्रोदय। समझ रहे हो ना आप सब? इसे अच्छी तरह से सुनिए वरना समझ में नहीं आएगा।
1: गुरामा, हम लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं।
2: बहुत अच्छे बच्चों। लो मृदु, तिमीले भन त अ आ को बाद मा उ या बड़ी उ आए तो पनिक के हुन्छ?
4: गुरामा, अ आ को बाद मा छोटी उ या बड़ी उ आयो भने को ओ हुन्छ। जस्ते महाजोर उत्सव महोत्सव।
2: बिल्कुल सही मृदुल। अनि स्नेहा, तिमीले भन त अ आ को बाद मा री आयो भनी के हुन्छ?
3: गुरामा, अ आ को बाद मा री आयो भनी अर हुन्छ। जस्तै देव जोर ऋषि देवऋषि।
2: एकदमै सही स्नेहा। अब तेस्रो हो वृद्धि संधि। अ अथवा आ के बाद यदि ए ऐ या ओ औ स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर ऐ और औ हो जाते हैं। जैसे एक एक एक, एक यथाजोर एव यथैव। इसी प्रकार अ और ओ से औ होता है। स्नेहा, आप बताइए अ अथवा आ के बाद यदि ए ऐ या ओ औ स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं?
3: गुरामा, अ आ के बाद यदि ए ऐ स्वर आए तो ए और ओ औ आते हैं तो औ हो जाते हैं। जैसे सदा जोर एव सदैव।
2: एकदम ठीक स्नेहा। अब मृदुल, तिमी आ और औ मिलाएर एउटा शब्द भन त।
4: गुरामा, आ र ओ देखि ओ हुन्छ। जस्ते महाजोर औषधि महोषधि।
2: एकदमै राम्रो मृदुल। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं यण संधि। जब हर्स्व अथवा दीर्घ ई उ बड़ी उ अथवा री से परे विजातीय स्वर आइन्छ, तब छोटी ई बड़ी ई को य, छोटी उ बड़ी उ को व, अनि री को र हुन्छ। और दोस्रो पद को प्रथम स्वर तस्मा जुड़िन्छ। और इनके संयुक्त होने पर पहले पद का अंतिम व्यंजन हलंत हो जाता है। बच्चों ध्यान से सुनिए, इनके संयुक्त होने पर पहले पद का अंतिम व्यंजन हलंत हो जाता है। जैसे यदि जोर अपि यद्यपि। बुझियो होइन तिमी हरुले?
1: जी गुरामा।
2: लो नानी हरु, अब तिमी दुई जनाले एउटा एउटा उदाहरण भन त।
3: अ अनि आले उ अनि आले व हुन्छ जस्तै सु जोर अच्छ सु अच्छ
4: गुरामा ई र ए ले ये हुन्छ जस्तै प्रति जोर एक प्रत्येक
2: आप दोनों ने बिल्कुल सही कहा तो बच्चों हमने स्वर संधि के पांच भेदों में चार के बारे में जान लिया है अब है पांचवा अयादि संधि यदि ए ऐ ओ औ को बाद मा के विजातीय स्वर आय भनी ए र अ को योग देखी अय हुन्छ जस्ते ने अन नयन मे अंक मयंक बुझ्यो तिमीहरूले
1: जी गुरुआमा
2: यसरी नै ऐ र अले आय अनि ऐ र बरी इले आई हुन्छ ओ र अले अव

0: व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे त और ई से दी, जगत जोर इश जगदीश। बुझो तुम्ही हरुले?
1: हजुर गुरामा।
0: बहुत अच्छे बच्चों। नानी हरु, व्यंजन संधि को नियम हरु को जानकारी राखनु एकदमै आवश्यक छ। पहला नियम है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तीसरा अथवा चौथा वर्ण आए, अथवा य, र, ल, व या कोई स्वर आए, तो क, च, ट, त, प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात क, ग में, च, ज में, ट, ड में, त, द में और प, ब में बदल जाते हैं। जस्ते क का ग में परिवर्तन से दिक जोर गज दिग्गज। अब स्नेहा एउटा उदाहरण भनता।
1: च का ज में परिवर्तन से उच्च और अन से अजंत होगा।
0: एकदमै ठीक स्नेहा। व्यंजन संधि को दूसरो नियम हो, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग को पहलो वर्ण को पांचों वर्ण में परिवर्तन। यदि क, च, ट, त, प के बाद न अथवा म आए, तो उनके मिलने से अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे जगत जोर नाथ, यहाँ त, न, न, न संयुक्त जगन्नाथ। नानी हरु, अब तिमी हरुले एक एक गरेर एउटा एउटा उदाहरण भन त।
1: चित जोरमय, त, म, न, म संयुक्त चित्तमय।
0: चिन्मय, ये क्या होगा? चिन्मय होगा। फिर से बोलिए।
1: चित जोरमय, त, म, न, म संयुक्त चिन्मय।
2: उत जोर माध, त जोर म, न, म संयुक्त उन्माग।
0: एकदमै ठीक नानी हरु। लो नानी हरु, अब व्यंजन संधि को तेस्रो नियम छ, त संबंधी नियम। नानी हरु, म यसको उदाहरण दिन्छु, तिमी हरुले ध्यान दिएर सुन। उच्चारण, यहाँ त, च से च, च संयुक्त उच्चारण। उत ज्वल, यहाँ त, ज से ज, ज संयुक्त उज्ज्वल। बुझ्यो तिमी हरुले?
1: हजुर गुरामा।
0: एकदमै राम्रो नानी हरु, तिमी हरु ध्यान लगाएर पढ्दै छौ। यसरी नै तपाई हरु सदैव ध्यान लगाएर पढ्नु। व्यंजन संधि के तीसरे नियम में है, त के बाद श हो तो त के स्थान पर च हो जाता है और श को छ में बदल देते हैं। जैसे उत श्वास में त, श से च, छ संयुक्त उच्छ्वास। सत जोर शिव में त, श से च, छ संयुक्त सचिव।
2: गुरामा, उत जोर हार से त, ह, द, ध संयुक्त से उद्धार होगा।
0: हाँ मृदुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अब चौथो नियम हो, म संबंधी नियम। पूर्व पद को अंतिम मा यदि कोई स्पर्श व्यंजन आयो भनी म लाई त्यसै वर्ग को पांचों वर्ण अथवा अनुस्वार हुन्दछ। बुझ्यो होइन तिमी हरुले?
1: हजुर गुरुआमा।
0: यसरी नै सम उपसर्ग देखि बाहिर अन्तस्थ अनि उष्म व्यंजन रहे तापनि म को अनुस्वार रहन्छ। जस्तै सम योग संयोग।
1: गुरामा, सम जोर सार संसार हुन्छ।
0: हजुर नानी, सम सार संसार पनि हुन्छ। मृदुल, तिमीले पनि उदाहरण भन त।
2: सम जोर वाद संवाद।
0: कति राम्रो मृदुल, तिमीले त सबै सिक्नु भयो, शाबास। इसी प्रकार नियम पाँच है, स का श में परिवर्तन। यदि अ अथवा आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के बाद स आए, तो संधि होने पर सौ का

0: शव में परिवर्तन हो जाता है।
1: गुरामा मा यस तो उदाहरण दियूं।
0: हाँ मृदुल दीजिए।
1: वी जोर सम विषम, वी जोर साद विषाद।
0: एकदमै ठीक मृदुल। अनि स्नेहा तिमीले पनि बुझ्यो?
2: हजुर गुरुआमा, मैले पनि बुझे।
0: लौ नानीहरू, अब तेस्रो सन्धि हो विसर्ग सन्धि। विसर्ग के पश्चात स्वर अथवा व्यञ्जन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जस्तै यशः दा यशोदा, मनः रथ मनोरथ। नानीहरू यहाँ विसर्ग बदल कर ओ में परिवर्तित हो गया है। इसी तरह विसर्ग के बाद च अथवा छ आए तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नीह जोर चल निश्चल, नीह जोर चय निश्चय। बुझियो होइ न तिमीहरूले?
3: हजुर गुरुआमा।
0: शाबाश नानीहरू। बच्चों एक बात आप याद रखिएगा कि यदि अ के बाद विसर्ग हो और उससे परे अ को छोड़ कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जोर एव अतएव। तो बच्चों आप लोग संधि समझ गए हैं। अब मैं कुछ प्रश्न पूछूं?
3: जी गुरुआमा पूछिए।
0: स्नेहा आप बताइए संधि किसे कहते हैं?
2: गुरुआमा दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं।
0: बिल्कुल सही। मृदुल आप दीर्घ संधि के उदाहरण दीजिए।
1: गुरुआमा महा जोर उत्सव महोत्सव।
0: हाय न मृदुल, ये तो गुण संधि के उदाहरण हैं। आपको दीर्घ संधि के उदाहरण बताने हैं, बता सकते हो?
1: हजुर गुरुआमा, अधिक जोर अंश अधिकांश।
0: एकदम ठीक मृदुल। अब मैं कुछ शब्द कहती हूँ, आप लोग उसके संधि विच्छेद कीजिए। सज्जन
3: सत जोर जन,
0: मनोहर
3: मन जोर हर,
0: अतेव
3: अतः जोर एव।
0: बहुत अच्छे नानीहरू, अब आप लोग घर जाकर इसे फिर से पढ़िएगा। पढ़ोगे ना?
3: हजुर गुरुआमा, हामी सबै यसलाई घर गएर पढ्छौं।
0: बहुत अच्छे बच्चों, अब हम अपने श्रोताओं से विदा लेंगे।
3: नमस्ते।
4: हर घर को वाणी आकाशवाणी, हर एक को हृदय को वाणी आकाशवाणी, अनि सबै को हृदयलाई जोड्नका लागि हामी आइ सकेका छौं मात्र एउटा क्लिकमा। हाम्रो स्टेशन्स लाइभमा मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, हर पलको विश्वसनीय खबर। हाम्रो वेबसाइट akashwani.gov.in मा। नयाँ भारत नयाँ आकाशवाणी।
5: के साह्रो मख परेर के सुनेको हौ मोबाइलमा?
6: रेडियो गान्तोक सुनेको नि। अहिले त यो मोबाइल एपमा पनि रेडियो गान्तोक मजाले सुन्न सकिन्छ नि। यी सुन्नुहोस् त।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं, लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
3: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
3: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
3: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं, क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
3: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
3: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
3: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCIT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है। और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
3: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
4: हर पल चलती जाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
4: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
4: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
4: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
4: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
4: घर को खूब सजाती चींटी,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
4: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
4: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: नहीं कभी घबराती चींटी,
4: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
4: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
3: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
4: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
3: काम बड़े करके दिखलाती,
4: काम बड़े करके दिखलाती,
3: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
4: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
3: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
4: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
3: हमको यही सिखाती चींटी,
4: हमको यही सिखाती चींटी।
3: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: क्या बात है भाई, ये वादे वाली बात आपने बेहतरीन लिखी है। अब कन्यादान फिल्म का ये गाना।
1: के चेहरे से हटा सकता नहीं।
0: हीरो हीरोइन का नाम आपको बताना है।
1: दिल की बेताबी किसी सूरत छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश है मोहब्बत की

0: कन्यादान फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी की बोल थे शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है आशा पारिख और शशि कपूर। जरा उन श्रोताओं के लिए जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर इस वक्त उपलब्ध नहीं है लेकिन रेडियो सुन रहे हैं, उनके लिए हम इबारत दोहरा देते हैं। कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है। फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा क्या ये खता है, हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा फिर कब मिलोगे इस बात का वादा करो, एक बार जो सनम से दिल लगा तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना उसकी अदाएं मन मोहने लगी, दिल को संभालना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा कि कहीं मुलाकात अधूरी न रह जाए, गले से लग जा, जिंदगी में शायद साथ इतना ही था और फिर दिल शायर बन गया गम नगमा। मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं। इस इबारत के साथ आप भी कोई इबारत लिख सकते हैं, हो सकता है आपके भीतर छुपी प्रतिभा परवान चढ़े और एक कवि हो जाएं आप, एक कहानीकार हो जाएं। बहरहाल ये जो दिल शायर बन गया इसको लेकर बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और एक गाना चुना है हमारे श्रोताओं ने गैम्बलर फिल्म का, दिल आज शायर है गम आज नगमा। तो चलिए यही गाना हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन जरा बताइए कौन है हीरो, हीरो का नाम बूझना है आपको।
1: गम आज नगमा है सब ये गजल है सनम।
0: गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

गैम्बलर फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, नीरज की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत। हमारे सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया देव आनंद, और गीतकार संगीतकार का नाम कुछ श्रोताओं ने गलत भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बचपन में सबसे पहले कहानी सुनी थी चिड़िया और कौवे की। चिड़िया मोम से घर बनाती है, कौवा गोबर से घर बनाता है। बरसात में कौवा का गोबर का घर बह जाता है और भीगा कौवा चिड़िया के मोम के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन घर छोटा होता है और चिड़िया अपने छोटे चूजे को खाना खिलाने में व्यस्त होती है, इसलिए वो कौवा को अंदर आने नहीं देती। इस तरह की कहानियां बहुत प्रचलित है और हम सब ने अपने अपने बचपन में सुनी है। दरअसल वो जो कहानी वाला बचपन था कहीं गुम हो रहा है। अब कहानियों की बजाय मोबाइल वाला बचपन है। अब बहुत सारे मम्मी पापा को कहानियां याद ही नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि कोई कहानी वाली किताब बताओ ना जो हम पढ़कर सुना दें, या कोई वो बताओ, लिंक बताओ जहां हम उसे लगा दें तो सुनते सुनते सो जाए। भाई वो लिंक वाली कहानी का वो सुख नहीं है जो माँ अपनी जबान से मॉड्यूलेट करके स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ सुनाती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर ये वक्त बहुत जालिम है, मिलता ही नहीं। वक्त को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कीजिए और लिख डालिए। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह। अपने जीवन साथी से प्यार करना, रिश्ते को पवित्र रखना है और बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आप अपनी बहुत अच्छी दोस्त याद आ गई इस प्रोग्राम के साथ, और अपना प्यारा पुराना घर याद आ गया जहां मेरी दादी और दादा रहते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत के साथ मैंने भी कुछ लिखा है कि उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मशहूर शायर साहिल लुधियानवी की पंक्तियां प्रेमियों के दिलों की हालात बयां करती है कि हर प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं होती, प्रेम कहानी करवट लेती और उसमें विरह उत्पन्न हो जाता है। वो प्रेम जीवन भर नदी के दूसरे छोर की तरह साथ साथ चलता है, महसूस भी होता है किंतु ता उम्र पहले छोर से मिल नहीं पाता। भाई प्रेम के साथ दर्द तो जुड़ ही जाता है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो मीराबाई क्यों कहती कि जो मैं ऐसा जानती नगर ढिंढोरा पीटती, प्रेम किए दुख होए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला गाना सुनते हैं। जरा बूझिए आप गीतकार का नाम और स्वर किसकी आवाज में ये गाना है, फिल्म बड़ा आदमी। और कोई नहीं बूझ पाया ये गाना, बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग गाने लिखे लेकिन ये गाना किसी ने नहीं लिखा। जरा सुनिए तो, और जरा संभालिए अपने दिल को और नोट कर लीजिएगा डायरी में ये गाना भी, जो लोग नियमित रूप से नोट करते हैं गाना।

बड़ा आदमी फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था गीतकार का नाम और किसकी आवाज में गाना है। सभी श्रोताओं ने सही बताया, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, लेकिन गीतकार का नाम बहुत सारे लोगों ने गलत बताया, प्रेम धवन की रचना थी ये।

एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि मोहब्बत का फलसफा अजीब है। जब प्रेम अपने रंग में होता है तो साधारण से दिन भी उत्सव लगने लगते हैं। हर आहट में संगीत सुनाई देता है और हर ख्वाब में उम्मीदों के फूल खिल उठते हैं। लेकिन यही मोहब्बत जब अधूरी रह जाती है या बिछड़ने की दास्तान बनती है, तब वही फूल यादों की चुभन और अश्कों की नमी में बदल जाते हैं। मोहब्बत इबादत भी है और इकरार भी है, मुकद्दर के इम्तिहान की तरह कठिन भी। शायद इसीलिए मोहब्बत का फलसफा अजीब होते हुए भी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि ये इंसान को जीना, मुस्कुराना, इंतजार करना और कभी कभी टूटकर फिर से संभलना भी सिखा देता है और बहुत सहनशीलता भी सिखाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे चाचा जी बाहर गांव सर्विस करते थे, तो उन्होंने एक रेडियो लाया था। वो वापस सर्विस पे जाते थे तो रेडियो पूरे दिन मेरे पास रहता था। तो आज की इबारत बहुत सुंदर लग रही है और मैं वो दिन याद कर रहा हूँ। शुक्रिया इस बात के लिए। अब बहुत सारे श्रोताओं की ओर से इस गाने की फरमाइश आई है, फिल्म ये रात फिर ना आएगी, और जो इबारत है, इबारत में जो शब्द है, फिर मिलोगी कभी इस बात का वादा कर लो, तो इसमें कई शब्द आ जाते हैं। प्यार वाले शब्द भी आते हैं, इकरार वाले भाव भी आते हैं। तो सुनिए जरा ये गाना और हमें बताइए कि किस पर फिल्माया गया है ये गीत और गीतकार का नाम। और आपको अपनी मुलाकात याद आती है किसी से, तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। यादों के गलियारों में आप टहल रहे हैं इन गानों के माध्यम से, तो अपनी यादें साझा करते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। कभी किसी से आपने ये बात कही थी जो गाने में है? कभी किसी से पूछा फिर कब मिलोगी?

रिश्ते की खूबसूरती की शुरुआत की, क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल पार्क में गर्मी बहुत हो रही है, कभी कभी कोई नहीं आती है, जब चलने का समय होता है तब पूछती हैं कल आओगी ना, मिलोगी ना। भाई ये तो सहज सा सवाल है और ये इस गाने में जरूर है, और हमने पूछा था कि आपने कब किसको कहा था, पूछा था ये सवाल, तो बता सकते हैं आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता की टिप्पणी है कि लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह, अपने जीवन साथी से प्यार करना रिश्ते को पवित्र रखता है, बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यासा कौवा वाली कहानी अपनी पोती को सुना रही थी, जैसे कि मैं हिंदी में सुना रही थी, पूरी कहानी सुनाने के बाद बोलता है दादी ये प्यासा कौवा नहीं था, ये तो थ्रस्टी क्रो था। तब मैंने उसे बताया कि तुम्हें प्यास लगती है तो बोलते हो ना कि मम्मी मुझे प्यास लगी है, तो हिंदी में प्यासा ही बोलते हैं, क्या बात है भाई। तो ठीक है, अगर वो थ्रस्टी क्रो के नाम से सुनता है तो भी उन्हें सुनाइए, धीरे धीरे वो प्यासा कौवा समझ जाएगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि जरा संभालिए अदाएं आपकी, ये गाना साल 1961 का है, बड़ा आदमी फिल्म का, बड़ा ही खूबसूरत और सदाबहार रोमांटिक युगल गीत है। इस गाने को सुर कोकिला लता मंगेशकर और दिग्गज गायक महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज से सजाया था। और अभी एक टिप्पणी आई है, लिखा है हमारे श्रोता ने कि अनेकों प्रेरणादायक कहानियां बच्चों को बचपन से आज तक धर्म पत्नी सुनाती रहती है और साथ में मैं भी सुन लेता हूँ, मैं स्वयं व्यस्तता के कारण सुना नहीं पाता हूँ। चलिए अच्छी बात है, ये सुनते और सुनाते रहिए। अब फिल्म दिल ने पुकारा, बताइए पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, मुकेश की आवाज है, गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

और अब हम गाने के साथ थोड़ी सी बेवफाई करके ये गाना पूरा नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि एक गाना जो जरूरी है इबारत से जुड़ा हुआ और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, दिल ने पुकारा फिल्म का ये गीत था, उसके बाद छोटी सी मुलाकात ये वाला गाना सुनवाना है, लेकिन कुछ टिप्पणियां भी आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकातें टीस देती हैं, बात अधूरी रह गई, साथ छूट गया। कुछ एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पतिदेव मुझसे भोपाल मिलने आया करते थे, वो बात याद आ गई। एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह से 10:30 बजे तक विविध भारती हम सुनते हैं, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के साथ हमारी दोस्त याद आ गई, दादी और दादा याद आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लाइन में कहानी वाली बात, बहुत मजा आया पढ़कर। अब ये प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: छोटी सी मुलाकात, बस आज की मुलाकात तो बस इतनी ही हो सकती है, यही फिल्म का नाम था। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jasprit Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia and Herzegovina in Group B clash in Toronto. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. Earlier speaking in a program, the Prime Minister noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors.
2: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
3: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
2: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
3: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
1: Prime Minister Narendra Modi added that the government is actively supporting self-help groups which are going a long way in making women financially independent. The Prime Minister further underlined that the efforts of the government are rooted in dignity, opportunity and empowerment, which helped in creating an environment where women can realize their full potential and contribute even more strongly to nation building. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. In a notification, the Petroleum and Natural Gas Ministry said the restrictions will be in place for up to 90 days. The retail outlets have been directed to sell up to 200 litres of high-speed diesel to a customer per day to prevent bulk purchase. Union Home Minister Amit Shah chaired a high-level meeting to review the preparedness for the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha, Directors General of the CRPF, BSF, CISF, ITBP and the SSB were present in the meeting. The Amarnath Yatra will begin on the 3rd of July and conclude on the 28th of August. President Draupadi Murmu arrived in Dehradun today on a 2-day visit. She was welcomed by Uttarakhand Governor Lieutenant General Gurmeet Singh, retired, and Chief Minister Pushkar Singh Dhami upon her arrival. As per the scheduled program, the President will visit Rashtrapati Niketan in Dehradun today and inspect the ongoing construction and development works of the Rashtrapati Udyan being developed over an area of 132 acres. The National Testing Agency, NTA, has extended the examination window by 15 minutes from 180 minutes to 195 minutes for re-NEET UG 2026, scheduled to be held on the 21st of this month. The new timings will be 2 p.m. to 5:15 p.m. The agency said it is committed to ensuring that NEET UG 2026 examination is conducted in a manner that is fair, secure and responsive to the needs of candidates. More from our correspondent.
4: The revised examination window includes the time required for mandatory examination formalities such as signing of attendance sheets and other invigilation procedures. The agency said in a statement that these improvements are based on feedback received from candidates over the years. Apart from this, the agency said that the space for rough work in the question paper booklet has been increased from 2 pages to 4, giving candidates more room for calculations and diagrams. Based on the feedback that the old layout was inconvenient for some students, especially those who are left-handed, the booklet's design has also been updated. Two rough work pages are now placed at the beginning immediately after the instructions, while the other two remain at the end. This new layout applies to both English and regional language versions, so all candidates can work comfortably. NTA said that even small improvements in examination design can have a positive impact on the experience of candidates during a high-stakes examination. These measures have therefore been introduced with the objective of making the examination process more comfortable and candidate-friendly while maintaining the highest standards of fairness and security. Candidates are advised to read the instructions given in the admit card and information bulletin carefully and cooperate with the examination staff for the smooth conduct of the examination. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: The Information and Broadcasting Ministry has released the Draft Telecommunication Rules 2026 pertaining to television, radio and related services for public consultation. The draft rules have been framed to consolidate the various guidelines issued for television and radio services under the previous Telegraph Act 1885 within the framework of the newly enacted Telecommunications Act 2023. The Supreme Court today dismissed the writ petition filed by Congress member Meenakshi Natarajan challenging the rejection of her Rajya Sabha candidature from Madhya Pradesh. The Supreme Court declined to interfere with the returning officer's decision rejecting her nomination for the Rajya Sabha elections over the alleged non-disclosure of a criminal case in Telangana. A bench comprising Justice Prashant Kumar Mishra and Justice A.S. Chandurkar observed that once a returning officer rejects a nomination paper, the statutory remedy available to an aggrieved candidate is to approach the Election Commission. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron will jointly inaugurate the Bharat Innovates Summit in Nice, France on Sunday. Talking to Akashvani News, Ambassador of India to France Sanjeev Singla said, "The idea is to showcase some of India's best deep tech talent outside of India that has been curated by the Ministry of Education." He informed that there are over 120 deep tech startups covering 13 areas which have been selected from over 1,200 startups.
5: Prime Minister would be here on the 14th of June. Both President Macron and Prime Minister Modi would be inaugurating Bharat Innovate Summit in Nice, which is the largest ever deep tech event being held by India outside of India. The idea is to showcase some of India's best deep tech talent outside of India. That has been curated by Ministry of Education. There are 120 deep tech startups covering, I think, 12 or 13 areas, which have been selected from over 1,200. And some of these startups cover critical areas when it comes to sustainable development, blue economy, or next generation manufacturing, next generation communication.
1: The Prime Minister is scheduled to visit Nice, France on the 14th of June as the first stop of his two-nation European tour covering France and Slovakia. The visit carries special significance as it will be his first bilateral summit with President Emmanuel Macron since the two nations elevated their ties to a special global strategic partnership in February this year. United Nations Secretary General Antonio Guterres and Secretary General of the International Maritime Organization IMO Arsenio Dominguez has condemned the attack on a Palau-flagged tanker off the coast of Oman in which three Indian seafarers have been killed. Spokesman for the UN chief, Stefan Dujarric, said Mr. Guterres is deeply concerned by the continuing escalation. Meanwhile, Secretary General of IMO has underscored the need to protect seafarers, civilian shipping and the freedom of navigation at all times.
6: We also know that there's been some ships that have been hit, notably the Citadel tanker that was hit, and a number of Indian seafarers were killed, and that is an attack that was clearly condemned by the Secretary General of the International Maritime Organization, and we fully support and second that language.
1: The two-day BRICS Agriculture Ministers Conference began today in Indore, Madhya Pradesh. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan welcomed all delegates and stressed on carrying forward the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, the idea that the whole world is one family. He said under Prime Minister Narendra Modi's leadership, India's approach is built on peace over war and cooperation over conflict. The minister said the country's total food production has risen to nearly 376 million tons. In Pakistan-occupied Kashmir POK, 16 people have been killed and 37 others wounded as the Pakistani army opened fire from AK-47 rifles on thousands of unarmed protesters in Eidgah ground. Although the demonstration started peacefully yesterday, demanding affordable flour, rice, electricity and basic rights, the scene soon turned violent with the Pakistani army unleashing gunfire on the crowd. Around 60 to 70,000 people had assembled in Rawalkot to raise slogans against Pakistan's continued occupation and policies in the region. The demonstrators were demanding justice for the 30 people who were killed and 200 injured in clashes between protesters and security forces in POK on Tuesday. Renowned Indian shooting coach and former Asian Games gold medalist Jaspal Rana has passed away. He was 49. According to National Rifle Association of India President Phalukesh Narayan Singh Deo, Rana breathed his last at a Delhi hospital last night. A report.
7: Born in Uttarkashi, Uttarakhand, Rana leaves behind a legacy that spans more than three decades as a shooting legend and national coach. He won multiple medals at the Asian Games and Commonwealth Games. Rana won a gold medal at the 1994 Milan World Championship in the junior category with a world record score, announcing his arrival on the global stage at the age of just 18. Jaspal has been widely credited as the man behind ace shooter Manu Bhakar's rise in the sport. Apart from Bhakar, Rana worked closely with several leading pistol shooters including Saurabh Chaudhary, Anish Bhanwala and Chinki Yadav. He was awarded the Arjuna Award in 1994, the Padma Shri in 1997 and the Dronacharya Award in 2020. Indian shooting has lost one of its finest ambassadors, athlete, mentor and sports journalism has lost a knowledgeable guide. Sayukta Yadav, Akashwani News, Delhi.
1: President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and other leaders have expressed grief at the passing away of Jaspal Rana. In FIFA World Cup 2026, South Korea defeated the Czech Republic 2-1 in a thrilling Group A clash today, earning valuable 3 points at Estadio Akron in Mexico's Zapopan. South Korea will next take on co-host Mexico, while the Czech Republic will look to bounce back against South Africa in a Group A clash. Today, co-host Canada will be up against Bosnia-Herzegovina in a Group B clash of Toronto Stadium. The match will start at 12:30 a.m. Indian Standard Time. In badminton, India's PV Sindhu stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney today. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Su Yu 21-6-21-9 in a one-sided quarter-final clash. The India Meteorological Department, IMD, has said a wet spell is likely to continue over northwest India till tomorrow, with the possibility of thunderstorms and gusty winds and hailstorms. According to IMD, conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, parts of West Bengal, Bihar, some parts of Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand and Uttar Pradesh during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. The United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaswal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia-Herzegovina in Group B clash in Toronto. With that, we end the midday news.
8: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
9: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
8: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
10: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहां उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पर हम रख रहे हैं।
8: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1650 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया एससीओ का केंद्र शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रूपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रूपये और प्रतिमाह 24,00,000 रूपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
8: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
11: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कैनेडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कैनेडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
8: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, अब हामी सुनाउन लागेका छौं विभिन्न कलाकारहरूका आवाजमा नेपाली लोकगीतहरू। सर्वप्रथम सुन्नुहोस् अञ्जली प्रधान अनि संगीता प्रधानको स्वरमा रहेको गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंची। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। राष्ट्रपति कल मुख्य अतिथि के रूप में देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ उन्होंने ये याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वो चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी की परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहां उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पर हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के झंडे वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में अब सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वाल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. Earlier speaking in a program, Prime Minister noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors.
3: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा।
4: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
3: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
4: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
2: Union Home Minister Amit Shah today chaired a high-level meeting to review the preparedness for the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha, Directors General of the CRPF, BSF, CISF, ITBP and the SSB attended the meeting. The Amarnath Yatra will begin on the 3rd of July and conclude on the 28th of August. The Supreme Court today dismissed the writ petition filed by Congress member Meenakshi Natarajan challenging the rejection of her Rajya Sabha candidature from Madhya Pradesh. The Supreme Court declined to interfere with the returning officer's decision rejecting her nomination.

0: for the Rajya Sabha elections over the alleged non-disclosure of a criminal case in Telangana. A bench comprising Justice Prashant Kumar Mishra and Justice A.S. Chandurkar observed that once a returning officer rejects a nomination paper, the statutory remedy available to an aggrieved candidate is to approach the Election Commission. The court therefore refused to grant relief and left it open for Natarajan to approach the poll panel. The National Testing Agency, NTA, has extended the examination window by 15 minutes from 180 minutes to 195 minutes for re-NEET UG 2026, scheduled to be held on the 21st of this month. The new timings will be 2 p.m. to 5:15 p.m. The agency said it is committed to ensuring that NEET UG 2026 examination is conducted in a manner that is fair, secure and responsive to the needs of candidates. The government has refuted a fake video circulating online which falsely depicts Union Finance Minister Nirmala Sitharaman promoting an investment platform. The manipulated video is claiming returns of up to 80,000 rupees per day and 24 lakh rupees per month on an investment of 22,000 rupees. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, has clarified that the video is fake and was created using artificial intelligence. PIB said neither the finance minister nor the government of India has endorsed, authorized or promoted any such investment scheme or platform. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron will jointly inaugurate the Bharat Innovates Summit in Nice, France on Sunday. Talking to Akashwani News, Ambassador of India to France, Sanjeev Singla, said the idea is to showcase some of India's best deep tech talent outside of India that has been curated by the Ministry of Education. He informed that there are over 120 deep tech startups covering 13 areas which have been selected from over 1,200 startups. In FIFA World Cup 2026, South Korea defeated the Czech Republic 2-1 in a thrilling Group A clash today, earning valuable 3 points at Estadio Akron in Mexico Zapopan. South Korea will next take on co-hosts Mexico, while the Czech Republic will look to bounce back against South Africa in a Group A clash. In badminton, India's PV Sindhu stormed into the women's single semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney today. And with that, we end this news bulletin.
1: हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं श्रोता अब सुन्न लागेका छौं नारी सशक्तिकरणमाथि एक विशेष कार्यक्रम
2: सभी श्रोताओं को स्वागत है आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रसिद्ध लेखक नीता नीरश मैडम एंड आज हम लोग अंतर्वार्ता करेंगे वुमन एम्पावरमेंट अंडर मोदी लेड गवर्नमेंट विद अ स्पेशल फोकस टू सिक्किम नीता मैडम आई हार्टली वेलकम यू टू द स्टूडियो ऑफ आकाशवाणी न्यूज गैंगटॉक
3: धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए
2: मैडम पहली जो आपसे जानना चाहेंगे बीइंग ए वेरी सीनियर जर्नलिस्ट व्हाट इज योर ओवरव्यू ऑफ द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ वुमन एम्पावरमेंट इस देश में अंडर मोदी लेड गवर्नमेंट ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स
3: मोदी लेड गवर्नमेंट के दौरान अभी तक जो भी उनका समय बीता उसमें बहुत कार्यकाल उसमें बहुत अच्छी प्रगति हुई है महिला सशक्तिकरण के लिए जैसे कि अब सबसे पहले तो देखा जाए होने को तो ये सब पहले से ही जानकार और ऊंचे उस पे ओहदे पे और सब थे पर यहां तक हुआ है कि हमारी जो राष्ट्रपति है वह द्रौपदी मुर्मू जी हैं इससे क्या होता है कि महिलाओं को इस प्रकार की महिला राष्ट्रपति मिलने से बहुत उनके मन में आत्मबल बढ़ता है उनका और उनको खुशी होती है और आगे बढ़ने को और भी अधिक उनमें संभावनाएं रहती हैं अच्छा उसके साथ साथ और क्या हो रहा है कि महिलाओं को पहले थोड़ा सा महिलाओं के लिए पढ़ाई पे ध्यान दो उनके सामाजिक उस पे ध्यान दो ये कहते थे पर अब क्या हुआ है अब इस किस्म से उन्होंने कहा है कि नारी कोष नारी शक्ति ही कह दिया एक अलग से ही बना दिया इससे नारी शक्ति से क्या है कि नारी को हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि नारी को अब खाली अपनी प्रगति है उनका विकास वो सब ना सिर्फ सोच के अब नारी को देश के उसके लिए देश के लिए नेशन बिल्डिंग के लिए उनको आगे आना चाहिए और देश को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाने में राजनीतिक उसमें उनको

0: सहभागी होना चाहिए। सो इससे काफी नारियां आगे आ रही हैं और साथ में राजनीतिक उनको बहुत अधिक आरक्षण भी मिल रहा है, तृणमूल स्तर से लेकर के सबसे ऊपर लोकसभा तक। सो ये भी उनके साथ क्या होता है कि नारी ऐसे होता है कि नारियों को अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, वो ज्यादा पता होती हैं और वह उसके लिए अधिक प्रस्ताव ला सकती हैं, समझा सकती हैं और कई नियम बनाने में सहायक हो सकती हैं। सो वह सब करने से भी अब नारी जो हैं वो बहुत देश में सुरक्षित हो गई हैं और उनकी बहुत प्रगति हो रही है।
1: मैडम, अगर एक नारी जीवन को हम सामग्रिक रूप से देखें तो कई स्तर से इनको डिवाइड किया जा सकता है। पहले एक बालिका, एक बेटी, एक स्त्री और कई कई बार एक माता, बहुत सारी भागों में आवंटित है एक नारी का पूरा जीवन। और हम सभी को पता है कि नारी का जो डेवलपमेंट, वो साइकोलॉजिकल हो या शिक्षा के बारे में हो, शुरू होता है बालिका स्तर से। और हमारा भारत सरकार पिछले 12 सालों में बहुत सारे नारी सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारे योजनाएं लाए हैं और इनको काफी तृणमूल स्तर पे, काफी ग्रासरूट लेवल पे इनको प्रयोग करने का पूरा कोशिश चल रहा है। तो आपसे मेरा जानने का ये आग्रह रहेगा कि जब ये कोई नारी बालिका स्तर में होता है और उनका शिक्षा का जब बात आता है, तब एक स्कीम बड़ा चर्चे में है अभी भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैडम, बालिका के सम्मान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये अब तक कितना प्रभावित कर चुके हैं देश के नारी को? और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हमारा राज्य सिक्किम में इसका कितना प्रभाव पड़ा है।
0: बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो प्रोग्राम है भारत सरकार का, मोदी जी ने जो शुरू किया था, ये 2015 में उन्होंने हरियाणा में किया था। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा कि पहले, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हरियाणा का वो कहना चाहूंगी देश के उसमें, कि वहां पर क्या था कि बेटियों का भ्रूण हत्या हो जाती थी। तो भ्रूण हत्या से क्या होता था कि बेटियां ही नहीं जन्मती थी। यहां तक हो गया था कि कुछ सालों में वहां पे लड़कियां ही नहीं थी विवाह के लायक, बहुत कम कभी लड़की मिलती थी, लड़की नहीं मिलती थी। तो 2015 में मोदी जी ने वहां पे अगस्त में ये योजना शुरू कर दी, बेटी बचाओ। सबसे पहले तो बेटी नहीं होगी तो किसको पढ़ाएंगे, तो बेटी बचाओ। तो बेटी बचाने से भ्रूण हत्या नहीं कर पाओ और बेटी को बचाओ, उसके बाद में बेटी को पढ़ाओ। तो उनके यह कहने से वहां इतना प्रभाव पड़ा कि अभी वहां पे नन्हे चिन्ह करके उन्होंने शुरू कर दिया है। और उसमें क्या होता है कि बेटी जन्मते ही पहले, जन्मने से पहले हत्या होती थी, परंतु अब उसके जन्मने पे बहुत बड़ा उत्सव होता है और वहां पे माँ जो है वो एक मटके में पानी लेके कुएं पे जाती है, वहां पूजा होती है और कभी कभी मंदिर भी जाती है, वहां कर लेती है पूजा, चाहे उसका मन हो तो कुआं चाहे मंदिर। और वहां पे साथ में क्या होता है, वो एक और जगह जाती है आंगनवाड़ी में, वहां पे छोटी बच्ची के जो पैरों के निशान है वो एक कागज पे लेके वहां चिपका दिए जाते हैं और उसका नाम लिख दिया जाता है। सो उसका रजिस्ट्रेशन जैसा ही हो जाता है वो। और इससे क्या होता है कि पहले ये उत्सव जो था पूजा और पानी ले जाके करने का, मिठाई बंटती थी, गांव वालों में खुशियां होती थी, उत्सव वो बेटे के जन्मने पे होती थी, परंतु अब मोदी जी के बेटी बचाओ से वहां पे बेटियों के जन्मने पर यह शुरू हो गया है। और इससे देश में क्या हुआ है, सेक्स रेशियो है मेल टू फीमेल वह भी बढ़ गया है। अब सिक्किम में अगर देखा जाए तो सिक्किम में ये कभी नहीं, भ्रूण हत्या कभी सुनी नहीं आज तक ऑन रिकॉर्ड। और पर ये है कि चलो बेटी पढ़ाओ जो है, वहां शायद कहीं गांव में थोड़ी बहुत कमी थी कि बच्चियां जो हैं वो क्या करती थी, बालिकाएं जल्दी स्कूल छोड़ना उनको पड़ता था घर के कुछ कामों के कारण। घर में अगर काम है, खेती गाय इधर उधर, तो बच्चियां जल्दी स्कूल छोड़ देती थी। और फिर ये आर्थिक प्रॉब्लम भी होती थी, लाइक फाइनेंशियल डिफिकल्टी। तो अभी ये सब नहीं है और इससे बेटियां जो हैं वह पूरी तरह से पढ़ाई में लगी हुई हैं और बहुत आगे बढ़ रही हैं और उनको बहुत सी सहायता मिल रही है, जैसे फ्री टेक्स्ट बुक है, स्टेशनरी है।

0: और स्कूलों में कई सुविधाएं मिल गई हैं, जिनके मारे पहले उनको स्कूल छोड़ना पड़ता था, अब उनको वो नहीं छोड़ना पड़ता, वहां अलग शौचालय है, सब कुछ है, इसलिए सिक्किम में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है।
1: एक बहुत अच्छा बात मैडम ने कहा है श्रोताओं कि एक जमाना ऐसा भी था जब बेटियों को जन्म होने के बाद वो एक दुख की घड़ी माना जाता था कई जगहों में, पर अब दिन भी बदला है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसा पहल चालू हुआ है, एक ऐसा मुकाम और एक ऐसा ट्रेडिशन चालू हुआ है कि हरियाणा से लेते हुए सारा भारतवर्ष में बेटियां जन्म लेने के बाद उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। सिर्फ बेटे नहीं, बेटियां भी अब देश का सिर्फ एक हिस्सेदारी नहीं, बल्कि ये कहना अतियोक्ति नहीं होगा कि हमारी बेटियां आज विकसित भारत जो बनने जा रहा है, बनने की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनका एक सशक्त पिलर बन चुका है। मैडम, आगे आपसे जानना चाहूंगा कि सुकन्या समृद्धि योजना जो काफी चर्चे में रहा है जब लॉन्च हुआ था और अब भी, ये कितना जो हमारा युवा बेटियां हैं इनको कितना सिर्फ आर्थिक दिक से ही नहीं, कितना इनको आगे बढ़ने में, इनका साकार करने में, इनको एक वैश्विक मंच पे अपना स्थान बनाने में कितना मददगार हो साबित हो रहा है।
0: ये बहुत ही अच्छी योजना है, मुझे ऐसा लगता है और है भी, क्योंकि इसमें क्या है कि जब बेटी के जन्म के बाद इनके जो माँ बाप हैं, पिता वगैरह, वो लोग कुछ पैसा इनके नाम पे खाता खोल सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये 500 से लेके और आगे 1,50,000 तक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जब पैसा जमा हो जाता है तो बाद में जब बेटी बड़ी होती है, से 18 साल की जब हो जाती है, तो उस समय के बाद उनकी शादी के लिए, पढ़ाई के लिए ये पैसा जो है ये यूज हो सकता है। तो उससे बच्चों को, बेटियों को पढ़ाई, ये नहीं है कि अब 12 क्लास पढ़ ली, 10 तक फ्री था हमने छोड़ दिया, या पैसे दे के पढ़ रहे थे, जो भी छोड़ना पड़ रहा है वो मुश्किल नहीं है। अब उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको हायर स्टडीज के लिए, उच्च शिक्षा के लिए भेज सकते हैं, और बेटियां अपनी आगे पढ़ने का सपना साकार कर सकती हैं, और चाहें तो वह रोजगार लेकर के और सेल्फ डिपेंडेंट भी हो सकती हैं। साथ ही भारत में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि शादी में बहुत खर्चा होता है, बेटियों का
1: जी,
0: खासकर बहुत खर्चा होता है, तो उसमें माँ बाप कई बार ऐसा होता है कि वह बहुत अधिक खर्च नहीं कर पाते और उनको ऋण लेना पड़ता है, या दुखी हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा होता है। परंतु अब ये पैसा जब उनके पास जमा है तो ऐसे जो अभिभावक हैं या पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनको अब चिंता उनकी ज्यादा नहीं रही, उनको टेंशन कम हो गई, अब वो आराम से वहां से पैसा लेकर के उनका, बेटियों का विवाह जो है वह कर सकते हैं। सो इससे एक तो यह है कि बेटियों की जिंदगी जो है उसमें थोड़ी खुशियां आ गई, उनको ये नहीं लगता कि हमारे मारे किसी को दुख है, एक। दूसरी चीज ये है कि उनकी पढ़ाई आगे बढ़ेगी, वो अच्छे से पढ़ लिख के विकसित भारत का एक हिस्सा बनेंगी, वहां योगदान देंगी। और
1: मैडम, एक जमाना ऐसा भी था और आपने भी शायद अपना बचपन में ये प्रत्यक्ष किया है कि बेटियों का जो जिंदगी अगर एक खाते में लाया जाए तो बहुत बड़ी एक अंश चूल्हे पे ही बीत जाती थी। मतलब किचन, घर का काम करना, खाना पकाना, और इनको बार बार सामाजिक तौर पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता था कि तुम्हारा डोमेन या तुम्हारा कार्य क्षेत्र सिर्फ घर पे ही सीमित है। पर अब देश आगे बढ़ने लगा है और खाना बनाने में कम से कम मेहनत लगे और कम से कम उनका पसीना छूटे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री पीएम उज्ज्वला योजना को इंट्रोड्यूस किया है। तो उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं देशभर की जो महिलाएं हैं, जो वर्किंग वुमेन भी है, कभी होममेकर भी है, तो उनका जीवन और स्वास्थ्य में कैसा सुधार ला रहा है? आपका क्या राय है इसमें?
0: ये तो मैंने देखा कि इससे सच में ही सुधार आ रहा है। मैं कुछ गांव में गई, वहां पर क्या था कि पहले उन्होंने चूल्हा दिखाया जहां लकड़ी जलती थी,
1: जी
0: तो इससे वन भी नाश होते थे, पर अब भी उनको गैस मिल रही है। तो सिलेंडर मिलने से क्या हो जाता है कि उनको एक तो उन्हें वैसे भी आर्थिक फायदा भी है, लाभ है, और दूसरा ये है कि वो धुएं से जो उनकी आंखें बिगड़ती थी और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, सांस बढ़ती थी, वह सब जो है वह अब इस कारण से नहीं हो रही। और स्त्रियां बहुत कम बीमार पड़ रही हैं, घर भी थोड़े सफा उनके हो गए हैं, स्वच्छता भी साथ साथ हो रही है, और यह बहुत अच्छी योजना है। यहाँ सिक्किम में भी यहाँ पे बहुत लोगों का है, और मैंने बंगाल में भी जाके गांव में देखा, और वहां पर परंतु वहां उज्ज्वला योजना तो चल रही है, परंतु वहां ने साथ में वहां क्या था कि भारतीय स्टेट बैंक ने वहां पर अपनी सीएसआर के अंतर्गत उन्होंने उनको वैसे फ्रेम बना दिए हैं जिनमें कि गैस का चूल्हा अब किस किस्म से फिट करना है, कैसे करना है, वो सब चिमनी भी उनके यहाँ है, चाहे गैस से वो बाजार से दूसरी बड़ी बड़ी स्टील की चिमनियां महंगी नहीं खरीदनी पड़ रही उनको, वो उन्होंने दूसरे किस्म की चिमनी बना दी है, और वो बाहर गांव वालों को उन्होंने मुफ्त में दे दी है, लगा दिया, जिससे कि ये उज्ज्वला योजना का फायदा भी उठाएं और वहां की महिलाएं जो हैं उनको जैसा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, धुएं से आंखें भी ना बिगड़े, तो यह इस किस्म से गांव में इसका बहुत फायदा
1: लाभ उठा रहा है। और मैडम जैसे कि हम अभी देख रहे काफी चर्चे में है और काफी संवाद पत्र काफी सारे न्यूज पोर्टल में भी आ रहे कि नारी अब आगे बढ़ के एक जॉब सीकर नहीं एक जॉब प्रोवाइडर बने हैं कई जगह पे, एकदम गांव से लेते हुए शहर से लेते हुए महानगरों तक, वो छोटे से छोटा भी उद्योग क्यों ना हो अपने पैर पर अपने बलबूते पर अपने शक्ति पर सशक्त होने की जो राह में चल पड़ी है। इसके लिए जो सबसे बड़ा प्रतिबंधकता हुआ करता था वो है अर्थ, पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आने के बाद वो काफी राहत उनको मिला है और उनके अंदर जो जॉब क्रिएटर का जो रोल था जो सपना था, कई कोई नारी अपना एक बुटीक खोलना चाहती थी, कई कोई नारी एक अपना फार्मिंग के लिए खुद को निखरना चाहती थी उस पेशे में, पर फंडिंग एक बड़ा इशू हो रहा था। पर स्पेशली ये सिक्किम के लिए भी मैं जानना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे काफी सारे आत्मनिर्भर नारियां हैं कई राज्यों की तरह, सिक्किम में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो प्रयोग है और इसमें नारियां जो सशक्तिकरण जो इनका मेन मकसद था कितना उभर के आया है वास्तविक चित्र में।
0: सिक्किम में जो महिलाएं, आपने ठीक कहा कि वो कई बार उनको ऐसे होता था कि पैसा नहीं है, कोष नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकती करके वह रह जाती थी, परंतु अभी क्या देखा गया है कि इन्होंने मुद्रा लोन लेने शुरू कर दिए हैं और इन्होंने कितने करोड़ तक ले करके, और अब वो क्या कर रही हैं कि बहुत सुंदर सुंदर हथकरघा का सामान बना रही हैं, जैसे बुनाई का है, छोटे मोटे कारपेट हैं, उसके बाद में गुरुंग का यहाँ का जो होता है भेड़ की ऊन के कपड़े बन रहे हैं, और साथ में फूड प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण, उसमें अचार वगैरह बन रहे हैं। अब ये केवल बन सिर्फ नहीं रहे हैं, इसमें क्या है कि बनाते समय उन्होंने अपना छोटा छोटा लघु उद्योग जैसा बना लिया है, और उसमें वहां पर उनके साथ में काम करने के लिए एक जना तो नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने औरों को भी इसमें नौकरी दी हुई है, तो वहां उनको भी फायदा है और इधर भी है। फिर उसके बाद क्या है कि ये सब बना करके यह बेचती है, मार्केटिंग होती है और ई मार्केटिंग भी है ये, और साथ में और क्या चीज है कि जैसे मेले लगते हैं कहीं देश में या यहाँ कहीं भी लगता है स्टेट में, तो उस समय उनकी खूब बिक्री भी होती है, और इससे इनको लाभ हो रहा है, ये स्वनिर्भर हो गई हैं और बहुत आगे धीरे धीरे आगे बढ़ाती जा रही हैं। तो पहले इनको कुछ कार्यक्रम में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, लाइक पैकेजिंग वगैरह अच्छी नहीं थी, तो इनको ये एमएसएमई से ट्रेनिंग दे रहे हैं और जगह से ट्रेनिंग मिल रही है, बहुत ट्रेनिंग स्किल बढ़ रही है, और उससे भी इनका बहुत अच्छा अब एकदम जैसे बाजार में फैक्ट्री से आया सामान है वैसा ही बना के बहुत अच्छी तरह से महिलाएं कर रही हैं, और इस प्रकार से और इनका सशक्तिकरण जो है वह हो रहा है।
1: इसी सवाल को और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जैसे

0: आपको भी पता है और हमारा सभी श्रोताओं को भी ये बात भलीभांति पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री सरकार के बहुत पहली कड़ी में जो वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्मिंग सिद्धांत उन्होंने लिया था वो है जनधन अकाउंट, क्योंकि उनको ये लगता था और सरकार को भी ये लगता था कि नारियों को जब तक डायरेक्टली बैंक का खातों से ना युक्त किया जाए, जब तक जो राशि जो रकम डायरेक्टली उनका खातों में ना पहुंचाया जाए, तो सशक्तिकरण का जो गाड़ी है वो स्टेशन से नहीं निकल सकता, क्योंकि सामाजिक तौर पर काफी अरसों से नारी को एक डिपेंडेंट यानी निर्भरशील सत्ता माना जाता था। पर यह सरकार का निश्चय, यह सरकार का डिसीशन था, एक सपना था कि नारी को सिर्फ निर्भरशील नहीं, नारी को एक सशक्त भागीदार बनाया जाए समाज कल्याण का। तो इसके तहत जनधन अकाउंट चलाया गया और बहुत सारे महिलाएं इनसे जुड़े और लाभान्वित हुए। सिक्किम में मैडम अगर हम लोग देखें, अभी आज का सिनेरियो में जनधन अकाउंट महिलाओं को कितना लाभान्वित कर रहा है?
1: जनधन अकाउंट महिलाओं का ऐसे है कि पहले तो महिला के खाते की जरूरत ही नहीं समझी जाती थी।
0: जी जी।
1: तो अभी जब महिलाओं ने खाते खोलने शुरू कर दिए हैं अलग अलग बैंकों में, तो उससे क्या फायदा हो रहा है राज्य के, मतलब जो है गवर्नमेंट सरकारी उसमें, तो उससे क्या है कि उनको अब लोन की टेंशन जो है वो खत्म हो गई है और वह इस प्रकार से अब घर से बाहर अपना काम करके और अपने पैसे स्वनिर्भर होके, उनको ये नहीं कि दूसरे के आगे उनको हाथ फैलाना नहीं पड़ता या रुकना नहीं पड़ता कि कब उनको पैसे मिलेंगे, कब कोई देगा, घर के बड़े या घर के जो आदमी हैं, शायद पति बेटे जो कोई भी हैं, पर अब उनका अपना है और वह इस प्रकार से स्वनिर्भर है और अपने आप को सशक्त महसूस भी करती हैं।
0: सरकार ने महिला नेतृत्व बाल विकास पर विशेष जोर दे रखा है और काफी एम्फेसिस इसमें है, तो ये दृष्टिकोण पारंपरिक कल्याणकारी नीतियों से किस प्रकार अलग है? क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि अभी अगर गवर्नमेंट सेक्टर देखे, प्राइवेट सेक्टर देखे, पीएसयूज देखे, सेना देखे, काफी सारे जगहों में नारियां बहुत उच्च पद में है और काफी अच्छे तरीके से अपना कर्तव्य अपना दायित्व निभा रहा है। तो इसमें सरकार का जो महिला नेतृत्व वाले विकास के जो जोग है और जो एम्फेसिस है, इसको कैसे आप इसको कैसे ओवरव्यू करेंगे?
1: उसमें ऐसे है कि भारत सरकार में सबसे पहले तो इन्होंने ये अच्छी बात कर दी कि महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वह अब 33% अगर आपको लोकसभा में मिले और विधान परिषद विधानसभा में, तो जो महिलाएं आगे आना चाहती हैं वह एकदम आ सकती हैं और आकर के आगे बढ़ के वो अपना काम कर सकती हैं, है कि नहीं?
0: जी।
1: और फिर पंचायत वगैरह में अब जैसे सिक्किम में है तो 50% है, पर अब देखा जाए तो कई बार ऐसे होता है कि उससे भी ज्यादा महिलाएं तृणमूल स्तर पर और आगे आ रही हैं। पहले था कि वो महिलाएं अशिक्षित हैं, महिलाएं घर का काम करें, खेती और कुछ नहीं कर सकती, परंतु अगर पंचायतें देखी जाएं तो महिलाएं काफी आगे
0: आगे आए हैं।
1: इवन सिक्किम जैसा जो सबसे बाद में बहुत देर से जहां डेमोक्रेसी आई है, वहां पर इन डेमोक्रेटिक उसमें लोग आगे आ रहे हैं नेतृत्व देने के लिए। अब यहां नई मेयर बनी है, वह भी महिला, उनको आरक्षण दिया गया और वह आई हैं, मतलब आदिवासी को आरक्षण मिला और उससे वह आगे आई हैं, पर जीत के ही आई हैं, जीती तो वह अपनी जगह से ही हैं। तो इस प्रकार से वह आगे बढ़ रही हैं और पद जहां पे ऊंचे पदों पर हैं, क्यों हैं? क्योंकि वह शिक्षा अच्छे से अर्जन कर पा रही हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उच्च शिक्षा ले रही हैं, इसलिए वह अब उच्च पदों पर हैं। और अगर देखा जाए तो मोदी जी ने अभी क्या किया है कि वो जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है वहां पर उन्होंने आर्मी की, पहले वुमेन को नहीं था, अभी उन्होंने महिला अफसरों को भी कमीशन करने को अलाउ कर दिया।

0: कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहले आर्मी के लिए जब बच्चे जाते हैं छान के पढ़ने के लिए जाते हैं अच्छे, तो उस समय खाली लड़के जाते थे, अब क्या है कि बेटियां भी लड़कियां भी जा रही हैं
1: जी।
0: तो इस प्रकार से ऊंचे पदों पर आगे भी इवन आर्मी में भी ये आएंगी। अब देश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा महिला पायलट हैं। अब क्यों हैं? क्योंकि उनको बढ़ावा दिया गया है, उनको आगे बढ़ाया है, सशक्तिकरण हुआ, इसीलिए वह आगे बढ़ करके आई हैं।
1: स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप काफी चर्चे में रहा है और देखा जाता है कि महिला सशक्तिकरण और ग्रासरूट लेवल पे ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। सिक्किम में सेल्फ हेल्प ग्रुप का कितना महत्व है जानना चाहूंगा मैडम, स्पेशली जो जिले है एकदम फार्देस्ट कॉर्नर में, कैसे रिमोट एरियाज में भी महिलाओं को सशक्त होने का, आर्थिक रूप से सशक्त होने का और समाज में एक अलग पहचान बनाने में मदद कर रहा है।
0: सिक्किम में SHG जो है स्वयं सहायता
1: समूह,
0: वह बहुत अच्छी तरह से गठन हुए हैं। इसमें क्या है कि ये महिलाएं अपना जमा होकर के एक समूह बनाती हैं, ग्रुप बनाती हैं और उसमें वो लोग मिलकर के कुछ काम करती हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा भी डालती हैं और उसके बाद में क्या होता है कि जो कुछ उत्पादन होता है उसकी बिक्री भी होती है। अच्छा, ये तो हो जाता है गांव की बात हो गई है, पर शहरों में क्या होता है, जो शहर के आसपास छोटी छोटी जगह है, मतलब एकदम बीच बाजार में नहीं, थोड़ा दूर, वहां पर क्या होता है कि ये लोग जो हैं इनको और चीजों में भी सहायता करने में ये आगे आती हैं। जैसे आपके वो है स्वच्छता, स्टेट में स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसमें ये क्या करती हैं कि यह शहरी विकास विभाग में वहां पर एक अलग से ही उनकी ब्रांच है, उसमें ये लोग सहायता के लिए बताती हैं कि करेंगी, अपना नाम देती हैं और ये कहां सफाई नहीं है, कहां ठीक से सफाई हो रही है, ये देखती हैं। और उसके बाद से ये लोग देखती हैं कि पानी जैसे है, अब पानी जगह जगह टूटा है इसलिए आपको पानी नहीं मिलता है, तो वो भी देखती हैं कि कहां पे पानी की लीकेज है, पाइपें टूट रही हैं, उसकी रिपोर्ट देती हैं और उससे वो सब भी ठीक होके शहर में उससे भी काफी फायदा होता है। उसके सिवाय ये कई चीजें उत्पादन करके ये भी औरों की तरह बिक्री करती हैं और इन्होंने इतना अच्छा काम किया है पिछले कुछ समय से कि खुश होकर के यहाँ के मुख्यमंत्री ने इनमें से कुछ को वो चेयरपर्सन बना दिया है, अध्यक्ष बना दिया है विभिन्न विभागों में और वहां इनको ऊंचा ओहदा दे दिया है, वहां उनको सैलरी भी मिलेगी, पैसे वेतन होंगे और इज्जत भी मिलेगी। इससे क्या है कि अन्य नारियां जो गांव में हैं और जो शहर में है उनको भी थोड़ा सा और साहस आएगा कि चलो हम भी मिलके कुछ अच्छा काम करें, उनको बढ़ावा मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी और इस प्रकार से सब आगे और बढ़ सकेंगे।
1: मैडम, अभी तक हमने बहुत नारी सशक्तिकरण योजना के ऊपर चर्चा किया है, सिक्किम को मुद्दे नजर रखते हुए आपके विचार में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई महिलाओं के लिए कौन सा योजना सबसे ज्यादा रिफॉर्म लाया है बोल के आपका मानना है?
0: महिलाओं के लिए एक तो मुझे लगता है कि ये जो मुद्रा योजना है
1: जी,
0: वह बहुत अच्छी है एक, और दूसरी जो है वो बेटी पढ़ाओ
1: बेटी बचाओ,
0: चाहे साथ में बचाओ भी है, पर बेटी बचाओ तो खैर बची हुई थी, पर बेटी पढ़ाओ
1: जी,
0: प्रोटेक्शन तो उनका था ही
1: जी,
0: तो बेटी पढ़ाओ वह भी बहुत अच्छी यहाँ की महिलाओं के लिए फायदेमंद हुई है। उसके साथ साथ में ये स्वयं सहायता समूह, इसको भी काफी मोदी जी ने जब जोर दिया तो उसके बाद से यहाँ पे काफी ज्यादा इसको महत्व दिया जा रहा है और यह भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वह काफी आगे बढ़ाने से यहाँ महिलाओं को बहुत इससे लाभ पहुंच रहा है।
1: मैडम, क्या आपको लगता है कि महिला सशक्तिकरण जो इतना मुहिम केंद्र सरकार चला रहा है और इतना योजनाएं एकदम देश के कोने कोने तक इम्प्लीमेंट करने के लिए जबरदस्त कोशिश जारी है, ये अभी आज के दिन में सरकारी कार्यक्रम ना रहकर बल्कि एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले रहा है, आपका क्या विचार है इस बारे में?
0: ये सरकारी कार्यक्रम है, सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं रह गया ये, इसके साथ में इतना अच्छा इसका प्रभाव पड़ा है कि यह एक सामाजिक आंदोलन हो रहा है। कई गैर सरकारी संस्थाएं इसको आगे बढ़ा रही हैं, कई बैंक हैं वह इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और तो और कई वो कई ऐसी जगह भी हैं राज्य में, कई जगह देखा गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी सलाह और मशविरा करके इनको महिला सशक्तिकरण और ये जितनी योजनाएं इनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। सो इस प्रकार से यह एक सामाजिक आंदोलन बनी रहा है और सबको यह पता लग गया है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और महिलाएं समाज का अंग तो है ही, परंतु बराबरी का अंग है, वह
1: भागीदारी
0: के समान भागीदारी उनको चाहिए और उनके हक जो हैं वह उनको समान रूप से मिलने चाहिए और वेतन समान होना चाहिए, काम भी ये नहीं कि उनको ज्यादा भार पड़े, समान होना चाहिए, यह सब जरूरी है, सबको समझ आ रही है।
1: सिक्किम के बालिकाओं के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास तक पहुंच बढ़ाने के लिए आपके राय में क्या क्या प्रयास हो सकते?
0: सिक्किम की बालिकाओं की कौशल के लिए ये है कि स्कूल में उनको कुछ किसी किस्म की स्किल वगैरह के वो दे सकते हैं प्रशिक्षण, और बाद में पढ़ चुकने के बाद फिर अलग से स्किल तो दे रही है, स्किलिंग हो रही है, परंतु स्कूल में ही साथ साथ में कुछ सिखाना वह कर सकते हैं। और इस प्रकार से और उनकी गुणवत्ता शिक्षा जो है उसके लिए ज्यादा ध्यान देने के लिए अभी सरकार ने किंडरगार्डन वाली स्कीम शुरू कर दी है, जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है, जिसे सरकारी स्कूलों में भी वो हो और बच्चे हर समय थोड़े अच्छे माहौल में प्ले वे से सीख सकें। सो यही अगर आगे इसको अच्छे से बढ़ाया जाए। और दूसरी चीज जो यहाँ महत्वपूर्ण है वो यह है कि शिक्षकों पर, जब शिक्षक काम पर रखे जाते हैं, नियुक्त करते हैं, तो उस समय बहुत ध्यान दे करके छोटी क्लास में, कम से कम प्राइमरी में बहुत ध्यान से उनको नियुक्त करना चाहिए, ऐसे जिनको कि पढ़ाने में थोड़ा सी उनकी इच्छा हो, उन्हें अच्छा लगता हो पढ़ाना, और ये नहीं कि भाई काम के लिए काम है तो टाइम बिताने का ना हो, तो बच्चे अच्छे पढ़ सकेंगे, गुणवत्ता शिक्षा होगी और तो कोई उनको प्रॉब्लम समस्या नहीं दिखाई देती अभी तो।
1: मैडम, सिक्किम के कई सारे जिलों में कई सारे पंचायत भी है, समुदाय भी है, तो सिक्किम के स्थानीय समुदाय, पंचायतें और नागरिक समाज संगठन महिला सशक्तिकरण का ये जो पहल देश भर में काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसमें किस प्रकार सकारात्मक सहयोग कर रहा है?
0: ये लोग इस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, सबसे पहले तो जो भी कोई प्रोग्राम कार्यक्रम होता है, कोई नीति होती है, एक तो उसको बढ़ावा देते हैं, उसके विषय में लोगों को बताते हैं, और फिर जैसे अब यहाँ पर एक महिला सशक्तिकरण का है कि भाई उनको थोड़ा सा आर्थिक रूप से सशक्त बनाओ, तो आमा योजना है सशक्तिकरण, यहाँ पे साथ में वात्सल्य योजना है और बहिनी योजना है, तो उसमें भी पंचायतें जो हैं वह ठीक कौन से लोग जो हैं जिनको जरूरतमंद हैं, जिनको देना चाहिए, उनके नाम वगैरह ठीक से आगे बढ़ाते हैं सरकार को, जिससे कि उनको ठीक से सब कुछ मिल सके। तो इस प्रकार से पंचायतें तो इस प्रकार से सहायता कर रही हैं, और नागरिक किस प्रकार से कर रहे हैं? अब नागरिक में यही है कि इसमें अधिकतर तो हरेक के घर में मेल मेंबर भी हैं, फीमेल मेंबर भी हैं, तो घर से ही उनको सहयोग मिल रहा है, और जो योजनाएं हैं जैसे पढ़ाई के लिए है तो घर वाले पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, काम पर भी महिलाओं को जाने दे रहे हैं, बल्कि सिक्किम में तो सबसे महिलाएं जो है ऑलमोस्ट 50% महिलाएं ही हैं अभी सरकार में, सेक्रेटरीज में देखो, सचिव में, तो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। और इवन हमारी सरकार में उपाध्यक्ष जो हैं सिक्किम की, डेप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली की महिला राजकुमारी थापा हैं, और अगर कहें कि आदिवासियों के कोई नहीं है तो श्रीमती पामिन लेप्चा आगे आई हैं। तो इस प्रकार से अब जगह बहुत है, परंतु अगर महिलाएं आगे नहीं आ रही, बस वो सिर्फ एक चीज है जिसे कि पंचायत और तृणमूल स्तर के लोग या नागरिक उन्हें बेशी उनका जागरण करके जागरूक करके उन्हें आगे बढ़ावा देकर उन्हें

0: अधिकारों के विषय में बताकर आगे बढ़ाएं तो ये और अच्छा हो सकता है। अभी तक इतना तो हो ही रहा है।
1: मैडम, जैसे तकनीकी और डिजिटल साक्षरता, अभी के जो दिन आए हैं, इस दिन का सबसे तकनीकी और डिजिटल साक्षरता आज का दिन में एक नारी को सशक्त होने का एक अन्यतम गुरुत्वपूर्ण पहलू है। तो ये डिजिटल साक्षरता मिशन को मुद्दे नजर रखते हुए सिक्किम जैसे थोड़ा पहाड़ी राज्यों में महिला सशक्तिकरण को और डिजिटल साक्षरता को और भी कैसे उभरा जा सकता है?
0: डिजिटल साक्षरता तो अगर कहें तो सबसे पहले तो ये मोबाइल फोन से ही डिजिटल शुरू हो जाता है। और यहाँ की हर एक महिला को आप हर समय गांव हो या शहर हो, आप देख सकते हैं कि इनके पास में मोबाइल है, उस पर लगी हुई है, तो उसके जरिए उनको काफी कुछ पता चलता है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए ये है कि इन्हें किसी प्रकार की इनको जो है प्रशिक्षण ट्रेनिंग अगर दे सकते हो, कोई ट्रेनिंग शुरू की जाए जिसे कि वो सीख सके कैसे है क्या है। अब स्कूलों में इनको कंप्यूटर से पढ़ाई कराई जा रही है, हायर स्टडीज जो है, और ऊपर जो ज्यादा ऊपर है जैसे ग्रेजुएशन लेवल वगैरह, वहां पर भी अगर थोड़ा सा डिजिटल वो करा जाए तो ये पढ़ के आगे बढ़ सकती हैं। अभी मैंने पीछे देखा कि सेंट्रल बैंक से जुड़ी हुई महिला जाकर के गांव में उनको ये डिजिटल साक्षरता के विषय में वो कर रही थी, उनको बता रही थी कैसे कर सकती हैं, कैसे वो ई मार्केटिंग कर सकती हैं, कैसे महिलाएं अपने पैसे वो बैंक से डाल निकाल सकती हैं, वो सब उनको सिखाया जा रहा था। सो इस प्रकार से ये चीजें छोटी छोटी इनके लिए ट्रेनिंग, अगर प्रशिक्षण की व्यवस्था अच्छी हो जाए और रेगुलर हो जाए तो यह हो सकती है। और ज्यादा से ज्यादा अगर करें तो टीवी तो नहीं है परंतु रेडियो के जरिए अगर इनको थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रोग्राम दे सकें, पैसे डालने निकालने और कैसे ऑर्डर करना है, कैसे क्या देखना है, अपना वोटर लिस्ट में नाम देख लें और कैसे अपने हक क्या क्या चीजें पढ़ सकती हैं देख सकती हैं, तो वह भी हो सकता है।
1: तो श्रोताओं, हम अभी अंतर्वार्ता के लगभग आखिरी चरण में आके पहुंचे। मैडम, आपसे एक आखिरी प्रश्न हमारा आग्रह रहेगा कि आज के भारत में शिक्षा, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में आप इसी अंतर्वार्ता के दौरान हमारे जो नारियां अभी भी सशक्त होने में लगे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो बालिकाएं सपना देख रहे हैं, सपने का उड़ान भरने के लिए प्रस्तुत हो रहे, उन सभी को क्या वार्ता देना चाहेंगे?
0: उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि वह ठीक है, आप अपने आप आगे आ रही हैं, बढ़ रही हैं, परंतु सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपके लिए कितने कार्यक्रम बन गए हैं आपको सशक्त करने के लिए। मोदी जी की सरकार ने इतना आपके लिए किया है, परंतु सबसे जरूरी क्या है कि आपको उनके विषय में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो अवेयरनेस जरूरी है और आप अपने लिए पता करिए कि आपके क्या अधिकार हैं, आपके क्या कर्तव्य हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकती हैं। और दूसरी बात यह है, सशक्तिकरण में हमेशा महिला जो है वह कमजोर है, ये है, ऐसे कहा जाता है, वह भी नहीं। आपको देखना है कि आपकी सुरक्षा के लिए कितनी चीजें दी गई हैं, आपके लिए वन स्टॉप सेंटर है, आपके लिए छोटे वो गृह बना दिए हैं जहां आप रह सकती हैं, रिपोर्ट करने के लिए आपके लिए नंबर है। सो उन सब में भी, उन सब का प्रयोग करके आप हमेशा सुरक्षित रह सकती हैं, और जब आप सुरक्षित होंगी तो आप आगे बढ़ने में आप और भी ज्यादा आगे रहेंगी। तो सब कुछ आपको ये है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए आपको अपने आप सशक्त महसूस करना है, आपको अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, बराबर समझना है, पुरुषों से कंधा मिलाकर आपको काम करना है, आगे बढ़ना है और अपनी जिम्मेदारियां और भी अच्छे से निभानी है। अभी तक ये कहते आए हैं कि जो हाथ पालना हिलाता है वही हाथ जो है संसार पर राज्य करता है, परंतु अब हमने क्या, सच में हम क्या देखना चाहते हैं कि हम महिलाएं पालना तो हिलाएंगी ही, परंतु

0: साथ में हर जगह छाई हुई होंगी, चाहे वह एयरफोर्स में हो, आर्मी में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, और राजनीतिज्ञ हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी बनना है आपको, मंत्री, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। देश के संविधान में सब कुछ आपके लिए, सब प्रकार की स्वतंत्रता और अधिकार है। केवल जानना है, आगे बढ़ना है, और अच्छे से अपनी अच्छी शिक्षा का देश में दी गई लाभ उठाना है। इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है।
1: तो श्रोताओं, जैसे कि इस अंतर्वार्ता में हमें उम्मीद है ये आप महसूस कर चुके हैं कि चूला से लेते हुए कांचनजंगा की चोटी तक, घर से लेते हुए अंतरिक्ष तक, वैश्विक बाजार से लेते हुए वायु सेना तक, 12 साल में नारी शक्ति सिर्फ निर्भरशील नहीं, एक सशक्त और विकसित भारत का पिलर बन चुका है। और इसी के साथ आज का ये अंतर्वार्ता मैं समाप्त करने का अनुमति चाहता हूँ। नीता मैडम को ढेर धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, और ऐसे ही अंतर्वार्ता हम लोग रहते रहेंगे। जुड़े रहिए आकाशवाणी समाचार गांतों के साथ। मैं मोइनाक चैटर्जी, समाचार संपादक, आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।

0: तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा।
1: फारूक अली खान और मिस अब्बासी बुलंदशहर से जो है अपना प्यार हम तक पहुंचा रहे हैं और आपके इस प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। विजय महोबिया, कविता महोबिया और पिंटू बाबू जो है हमें खंडवा से मैसेज भेज रहे हैं और अगला जो मैसेज है ये है व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष का और अगला जो मैसेज है ये है शास्त्री नगर वीर शहर से किसन सपकाल आशा सपकाल सोनिया सपकाल सायरा सपकाल विशाल सपकाल और ये भी हमें जो है अपना प्यार भेज रहे हैं और आपके इस प्यार के लिए तो शुक्रिया मैं तहे दिल से कह ही चुकी हूं और जितनी बार कहूं उतना कम है। हमें अगला मैसेज लखनऊ उत्तर प्रदेश से भेजा है मास्टर खिल्लू परवेज बेगम इमराना नाज राधा नामदेव ने और ये जो हमें मैसेज आया है ये नाम तो नहीं लिखा ये है शायद सुदर्शन मुखी अनीता मुखी सिमरन मुखी ये हमें सोनीपत से जो है मैसेज कर रहे हैं। आपके इन मैसेजेस और प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन ने मैसेज किया है कौशल्या देवांगन ने भी मैसेज भेजा है और हेमलता डिम्पल ये भी हमें नमस्कार भेज रहे हैं अपना। और हमारा अगला जो मैसेज है ये है भोपालगढ़ राजस्थान से आया है धर्मेंद्र छीपा कपिल छीपा ईशान छीपा और पूजा परिहार ने और कार्यक्रम का जो आखिरी गीत है वो है फिल्म कालीचरण से और इसकी फरमाइश हमें नांगलोई से आई थी जो थे राहुल कृतिका और जगदीश। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

नमस्कार फौजी दोस्तों, भारतीय सेना के वीर जवानों और देश के रक्षकों का पसंदीदा कार्यक्रम शौर्य गाथा में मैं सीमा झा आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सरहद पर जागते हैं ताकि देश चैन की नींद सो सके। आप देश का वर्तमान सुरक्षित रखते हैं ताकि हमारा भविष्य महफूज रहे। और हमारे देश का भविष्य कौन है? हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे। दोस्तों, कहते हैं कि बच्चे कल का भविष्य हैं, लेकिन यह भविष्य तभी सुनहरा रंग ले पाएगा जब उनका आज यानी उनका बचपन सुरक्षित होगा। मगर अफसोस, आज भी हमारे समाज के कई हिस्सों में इन मासूम हाथों से किताबें छीनकर उनसे बाल मजदूरी कराई जाती है, जो न केवल कानूनन अपराध है बल्कि इंसानियत के खिलाफ भी है। इसी बाल श्रम की रोकथाम और इसके खिलाफ दुनिया को जगाने के लिए हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद सिर्फ एक है, हर बच्चे को मजदूरी के दलदल से निकालकर शिक्षा, सुरक्षा और एक खिलखिलाता हुआ बचपन देना। आइए इस गंभीर मगर बेहद जरूरी विषय पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम में सुरों का तड़का लगाते हैं। सुनते हैं फिल्म दो कलियां का गाना, स्वर है लता मंगेशकर जी का, संगीतबद्ध किया है रवि ने।

दोस्तों, बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे बेफिक्र और मासूम दौर होता है। यह वो वक्त होता है जब बच्चों की झोली में सिर्फ खिलौने, रंग बिरंगे सपने, स्कूल की किताबें और बेपरवाह मुस्कुराहटें होनी चाहिए। लेकिन कितनी अजीब विडंबना है ना, जहां एक तरफ हम चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भी कई लोग अपने बच्चों को कारखानों में कोयला ढोने, होटलों में जूठे बर्तन मांजने, तो कभी तपती धूप में चौराहों पर सामान बेचने के लिए मजबूर कर देते हैं। जिस उम्र में हाथों में खिलौने और किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में उस मासूम कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। यह सिर्फ एक बच्चे के अधिकारों का हनन नहीं है, यह उस बच्चे के सपनों की हत्या है। शिक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि हर बच्चे का बुनियादी और मौलिक अधिकार है। दोस्तों, जब एक बच्चा स्कूल न जाकर काम पर जाता है, तो देश का एक डॉक्टर, एक इंजीनियर या शायद सरहद पर देश की रक्षा करने वाला एक भावी फौजी हमेशा के लिए खो जाता है। सरकारें कानून बनाती है, संस्थाएं काम करती है, लेकिन जब हम यानी पूरा समाज अपनी आंखें नहीं खोलेगा, तब तक यह बदलाव मुमकिन नहीं है। वक्त हो गया है कार्यक्रम के एक और गीत सुनने का। सुनते हैं फिल्म बूट पॉलिस का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वर में।

दोस्तों, शौर्य गाथा का यह सफर जारी है और आज हम बात कर रहे हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर। अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर यह बच्चे काम करने पर मजबूर क्यों होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है जागरूकता की भारी कमी। सरकार की कई योजनाओं के बावजूद कई लोग बच्चों को स्कूल भेजने के बदले उन्हें मजदूरी करने भेज देते हैं ताकि घर में थोड़ा और पैसा आ जाए, मगर वो यह नहीं समझ पाते कि आज का थोड़ा सा पैसा उस बच्चे की पूरी जिंदगी को अंधकार में धकेल रहा है। यहां जरूरत है एक बड़े बदलाव की, एक नई सोच की। यदि समाज का हर सक्षम व्यक्ति, हर संपन्न परिवार सिर्फ एक गरीब बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी उठा ले या उसकी पढ़ाई में थोड़ा सा भी सहयोग कर दे, देश की तस्वीर बदलते देर नहीं लगेगी। हम भी देर नहीं लगाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, जिसे हमने फिल्म इकबाल से लिया है और स्वर दिया है के सलीम मर्चेंट और साथियों ने।

दोस्तों, आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस तो है ही, साथ ही आज हिंदी सिनेमा के उस महान गीतकार का जन्मदिन है जिन्होंने हिंदी फिल्म जगत को कई खूबसूरत और अविस्मरणीय गीत दिए हैं। इनकी कलम जब कागज पर चलती है तब सैकड़ों खूबसूरत गाने लोगों के रूह में उतर जाती थी, जिसने अपनी कलम से जज्बातों को अमर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज गीतकार संतोष आनंद जी का जन्मदिन है। आकाशवाणी गांतों की ओर से इन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

उत्तर प्रदेश में जन्मे संतोष आनंद जी ने 70 और 80 के दशक में अपनी रूहानी और संजीदा शायरी से बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर गीत दिए। एक प्यार का नगमा है, जिंदगी की न टूटे लड़ी और मोहब्बत है क्या चीज जैसे उनके लिखे गीत आज भी हर पीढ़ी के दिलों को छू जाते हैं। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान और प्रेम रोग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया इन्हें। जीवन में बेहद उतार चढ़ाव रहा, लेकिन इन्होंने कभी अपनी सादगी और मुस्कुराने का हुनर नहीं खोया। उनकी रचनाएं आज भी हमें सिखाती है कि जिंदगी और कुछ भी नहीं, बस तेरी मेरी कहानी है। महान गीतकार संतोष आनंद जी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए सुनते हैं उनका लिखा हुआ यह बेहद खूबसूरत नगमा, मुकेश के स्वर में, शोर फिल्म का गाना।

दोस्तों, शौर्य गाथा का यह सफर जारी है और आज हम बात कर रहे हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की। फौजी भाइयों, आपकी वर्दी जैसे देश को दुश्मनों से बचाती है, वैसे ही समाज के नागरिक के तौर पर हमें इन बच्चों के बचपन को इस सामाजिक बुराई से बचाना होगा। दोस्तों, हम आम आदमियों को यह प्रण लेना चाहिए कि हम ना तो किसी बच्चे से मजदूरी कराएंगे और ना ही अपने आसपास किसी को ऐसा करने देंगे। हम बच्चों के हाथों में हथौड़े और औजार नहीं, बल्कि किताबें और नए सपने सौंपेंगे। और जब देश का हर बच्चा स्कूल जाएगा, तभी हमारा भारत सही मायने में तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। हमारा एक छोटा सा प्रयास किसी नन्हे फरिश्ते की पूरी दुनिया बदल सकता है। बातों बातों में ही वक्त हो गया है कार्यक्रम के अंतिम गीत सुनने का। सुनते हैं संतोष आनंद जी का लिखा गीत मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर में, और फिल्म का नाम है क्रांति।

इसी के साथ हमारा आज का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहती हूँ। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए नमस्कार, जय हिंद।

0: लंगे चो थारिंग थे लें अची ले रिम ना छो बी ताता साते लंगे चुके लोटी का गा तो पंगे मे ते डे जो पीले रिम छापटा से मना पोई ना शिराब जा छो डे जो पो थारिंग के ले रिम नंग ले कम शू तो ही दादी जब बे लेंगे चो से मना गिल सा दे ले जो तिकी हिंदी के ना के
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए

ये केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत एआई मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि भारत एआई मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की एआई यात्रा में महत्वपूर्ण है। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आई मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
1: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आईं, उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
2: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती है तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोविनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़कर के और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियां संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति एक संपदा चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
2: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहां अवसंरचनाओं के विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एम्यूनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहां जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ, दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था टैक्स ओवर टैक्स उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में जहां परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो वहां लेकर के जाऊंगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूंगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की जीडीपी में 6%

0: परसेंट का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है। निवेश विज रोजगार सर्जित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रोक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है, जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णुप्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पांस आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे, जहां एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहां से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 50 से ज्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए, भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यता का इतिहास

व्यास में भारत के ऋषियों ने मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। यह हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे। उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पर काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोडमैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोडमैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च की 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था, लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को

0: युवावाणी कार्यक्रमका तमाम श्रोताहरूमा नमस्कार। श्रोता, आज हामीले एउटा विशेष सांगीतिक कार्यक्रम लिएर आज आएका छौं र हामीले हाम्रो यो कार्यक्रममा आज निम्ताएका छौं एउटा नयाँ ब्यान्ड सृष्टि ब्यान्डलाई। हजुर श्रोता, यहाँहरू आज हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ र सर्वप्रथम यसबारे हामी जान्न चाहन्छौँ यो सृष्टि ब्यान्ड, यसबारे अलिकति बताइदिनुहोस्।
1: हाम्रो यो सृष्टि ब्यान्ड हामीले यसै साल
2: प्र्याक्टिस इन द लाइफ वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इम्पोर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़कर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
3: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
2: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित

0: हो सके इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा
1: जी,
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसा क्या भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: श्रोता तिन्जेल प्रस्तुत थियो पण्डित हरित प्रसाद चौरसियाबाट कार्यक्रम सुर संसार अन्तर्गत बाँसुरी वादन। हामी आकाशवाणी गान्तोकको रात्रि प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता समय यस बेला रात्रिको 8:45 हुनै लागेको छ र अबको केही क्षणमै आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछौ क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा

0: सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 100

0: 20 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है, 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाश

0: राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले दो दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरूपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons US Charge d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over US strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power.

0: श्रोता, यसरी गीत सुन्ने क्रममा हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। त आजको अन्तिम प्रस्तुति छ आदि फिल्मबाट किशोर कुमार अनि लता मङ्गेशकरको आवाजमा सजेको यो गीत।
1: बरसों बाद यूं फिल्म में निकली हूं, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।